0: Hello, good morning, namaste, Saskatoon. CFCR 90.5 FM पर शनिवार का दिन है और हम आ गए हैं आज का संगीतमाला लेकर. और आज का ये संगीतमाला आप सुनेंगे मेरे यानी नीपा के साथ और मेरा साथ देंगे.
1: जी हाँ, आप ही का दोस्त और होस्ट मनीष. कैसे हाल चाल हैं आपके? मौसम बहुत थोड़ा सा चेंज हो चुका है आज और ठंडक है थोड़ी सी, भीनी धीमी सी बारिश हो रही है.
0: देखा ना कि फॉल कलर्स देखना कितना अच्छा लगता है.
1: द कलरफुल फ्लावर्स, बिल्कुल पत्ते जो हैं बिल्कुल पिंक कलर के हुए हुए हैं और फ्लावर्स भी थोड़ा सा दिख रहे हैं गीले गीले से, भीगे भीगे से. तो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन मौसम में ठंडक थोड़ी सी महसूस हो रही थी. तो आई बिलीव आप सब लोग भी आराम से अभी कंबल में बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ हमारे आज के गाने सुनिए.
0: और मनीष जी, सबसे पहले हम हमारे लिसनर्स को हमारे स्टूडियो का नंबर बता दें.
1: जी हाँ, 306-242-5002, और इस पर कॉल कीजिए और अपनी फरमाइश के गाने हमें बताएं, हम जरूर उनको प्ले करेंगे.
0: और मनीष जी, जैसे आपने कहा ना कि थोड़ी सी बारिश भी हो रही है तो गीली गीली सी फीलिंग्स भी आ रही है. और मैं सोच रही थी क्योंकि आज दिल बड़ा भारी सा हो रहा है, जैसे हमें पता चला कि हमारे नाना पाटेकर जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं. तो मैं कल पूरी रात वही सोच रही थी कि कैसे क्या बोले. अभी ऐसी महान हस्तियों के बारे में कुछ बोलना, और अभी तो सब सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी नाना जी की ही बातें हो रही है, तो हम बता बता के क्या बताएंगे. लेकिन मैं वो ड्राइव करते वक्त मैं सोच रही थी कि देखिए, आज मन भी भारी है और बारिश भी हो रही है, तो मतलब आज ऐसा माहौल हो रहा है कि हम सब नाना जी को श्रद्धांजलि देने वाले हैं. तो शायद कुदरत को भी पता है कि ऐसा मौसम होता है तो हम थोड़ा लो फील करते हैं. और नाना पाटेकर जैसी हस्ती के बारे में अभी क्या कहूँ, मुझे वो समझ में नहीं आता.
1: बिल्कुल, अगर नाना पाटेकर जी का हम उनका स्ट्रगल, यानी जो जिस जगह से वो आते हैं एक छोटे से गांव से, और जो उन्होंने वहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट करी, बहुत ही मतलब अच्छा समय भी था उनका. लेकिन एक उनका सेटबैक ऐसा आया बिजनेस में कि उनके फादर का, और उनको बहुत नुकसान हुआ और वो उनको बहुत फिर छोटे छोटे काम करने पड़े. और इवन उन्होंने पोस्टर्स, फिल्मों के पोस्टर्स लगाते थे वो, तो बॉम्बे में आकर के.
0: छोटी उम्र जी, मैं वही सोचती हूँ कि अगर आज हमारे बच्चों को हम देखें या हम हमारे लाइफ को देखें कि जब हम 13 साल के थे हमें क्या कुछ समझ भी नहीं थी ना, कि हम लोग वी वर ब्लेस्ड के हम लोग पेरेंट्स के साथ रहते थे, उनके छत्र छाया में हमारा बचपन इतने सिक्योर्ड हम लोगों ने बचपन गुजारा है. और नाना जी को देखिए, तो वही है कि देखिए अपने हिज अपने बलबूते पर आज जो भी उन्होंने नामना हासिल की है और आज हम सब उतना याद कर रहे हैं, तो वो उन्होंने स्क्रैच से अपनी लाइफ शुरू की.
1: बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर उन्हें देखें आज भी, यानी उनकी जस्ट डेथ से पहले भी, ही वॉज सो फिट, यानी कि उन्होंने इंटरव्यू भी उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना इंटरव्यू भी दिया, उसमें कितने फिट वो लग रहे थे और वह रहते भी थे. मतलब उनके जैसा फिट मैंने, मतलब होता ना कि बहुत कम, जैसे या तो एक लंबी बीमारी से वो चल रहे हों या कुछ गुजर रहे हों, कुछ इस तरह की हालात हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. ही वॉज वेरी वेल फिट. और जैसा गाना एक उनकी जो राजू बन गया जेंटलमैन मूवी आई थी उसमें था, तो सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, क्यों ना उनका एक गाना पहले प्ले करें फिर और बात करें उनके बारे में.

0: वैसे हम सब जानते हैं कि नाना पाटेकर जी का रियल नाम था विश्वनाथ पाटेकर, और बचपन में उनकी मौसी उनको नाना नाना करके बुलाती थी और प्यार से विशु भी बुलाया करती थी। लेकिन फिर जो नाना नाम है वो ही उनका चल गया, कि और वो बता रहे हैं कि आज पासपोर्ट में भी उनका नाम नाना पाटेकर ही लिखा था, क्योंकि जो बोलते हैं ना, जो मेन नाम होता है वो साइड पे रह जाता है, और उसी नाम से फेम उनको मिल गई तो उन्होंने अपना वही नाम कंटिन्यू किया था। और देखिए, बचपन से उनको एक्टिंग का तो शौक था, लेकिन सब भाई बहनों में वो अपने आप को समझते थे कि नहीं, मेरे में कुछ कमी है, या मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे भाई बहनों को ज़्यादा चाहते हैं, मुझे नहीं प्यार करते हैं। तो वो पता ना, बचपन में वो इनसिक्योरिटी उनको हुआ करती थी। लेकिन फिर जब उन्होंने एक बार स्कूल में प्ले में पार्टिसिपेट किया, और उनका जो प्ले किया था, तो उनके डैडी जो थे वो बॉम्बे से स्पेशली उनका प्ले देखने के लिए वो उनके गांव आए हुए थे, और तब नाना को लगा कि अरे, ये तो अच्छी बात है कि पापा का अटेंशन मेरी तरफ बढ़ रहा है। और उनके पापा ने उनको बहुत ही सपोर्ट किया था कि नहीं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। कि वो बचपन में ना गाँव में तमाशा आया करता था, तो वो तमाशा देखते वक्त उसके पापा तो जाते थे, तो साथ में नाना पाटेकर को भी लेकर जाते थे और बताते थे छोटी छोटी बारीकियाँ कि देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे रोल प्ले करते हैं। और फिर देखिए, नाना जी को ऐसे ही एक्टिंग में इतना शौक था, और फिर उन्होंने वो ड्रामा कंटिन्यू किया स्कूल में, हाई स्कूल में, और जैसे फिर कॉलेज में भी आए, तो फिर उन्होंने जे जे कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट में उन्होंने एडमिशन लिया था। और तब से वो देखिए एक्टिंग में माहिर थे, उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी। और मनीष जी, आपको पता होगा कि ड्रामा, आप भी आई थिंक आपने भी ड्रामा स्कूल
1: जी,
0: से ही आप बिलोंग करते हो, तो पता है ना, वहाँ पे डेडिकेशन इतना चाहिए कि रिहर्सल
1: बहुत
0: ज़्यादा चाहिए। तो नाना पाटेकर भी आज जो भी फिल्मों में काम करते थे, तो उनकी जो एक्टिंग है वो इतनी नेचुरल थी, क्योंकि वो रिहर्सल में बिलीव करते थे।
1: बिल्कुल। और मैं तो इस बखूबी इसको क्या जानता हूँ, और मैंने खुद देखा हुआ है कि जो आर्टिस्ट यानी एक्टर मैं कह सकता हूँ, जो बैकग्राउंड अगर आप उनका देखोगे, अगर थिएटर
0: स्टेज
1: है
0: को।
1: और उन्होंने अगर लाइव थिएटर्स किए हुए हैं, तो उनकी एक्टिंग आपको अलग ही
0: जी
1: दिखेगी।
0: जी जी
1: और क्योंकि वो इतना बारीकी में घुसना पड़ता है आपको, क्योंकि लाइव जब आप पब्लिक को फेस करते हैं तो वो कैरेक्टर को आपको इतना लाइव दिखाना पड़ता है, लाइवली, कि उन्हें महसूस हो के वाकई में वो नाना पाटेकर को नहीं, उस कैरेक्टर को देख
0: जी
1: रहे हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: काइंड ऑफ दैट, तो वो बिल्कुल मैं उनसे अपने आप को लिंक कर सकता हूँ। तो नाना पाटेकर जी तो वर्सटाइल एक्टर, मतलब किसी भी तरह की एक्टिंग उनसे करवा लीजिए, यानी उन्होंने किस तरीके के रोल्स, यानी एक सीरियस रोल भी किए हैं उन्होंने, गंभीर जिसको बोलते हैं, बहुत गंभीर रोल कैरेक्टर्स भी किए हैं, प्लस उन्होंने एज ए विलेन का कैरेक्टर भी किया, और फिर एज ए कॉमिक कैरेक्टर भी उन्होंने
0: जी
1: किया। तो एक बहुत मुश्किल होता है कि इतने सारे कैरेक्टर्स को कर पाना और उन्हें दर्शा पाना। तो
0: और हमें पता ही है कि जो भी हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रामा जो स्टेज कर कर आए हैं, थिएटर करके आए हैं, जैसे ओम पुरी, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम
1: अनुपम
0: खेर
1: खेर,
0: जी, तो ये सब की आप देखिए ना, एक्टिंग में इतना उनका परिपक्वता होती है, इतनी उन लोग में गहराई से वो करते हैं, वो रोल को निभाते हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि स्टेज से आया हुआ आंसर, और जब ऑडियंस को फेस करना, मुनीश जी तो पता है ना, पेट में तो बटरफ्लाइज उड़ते ही हैं जब हम लोग यहाँ पे, मैं तो यही कहूँगी कि जब भी हम लोग ये संगीत वाला भी करते हैं ना, तो
1: क्योंकि
0: शुरू शुरू
1: सबसे बड़ी
0: में
1: चीज़ है नेपा जी, उसमें रीटेक नहीं होता।
0: जी,
1: मतलब आप मूवीज़ में 50 रीटेक कर सकते
0: हाँ
1: हैं, उस
0: यस
1: सीन को आप दोबारा एक्ट कर सकते हैं, लेकिन थिएटर में जो आपने एक बार बोल दिया, जो आपने एक बार कैरेक्टर कर दिया, जो
0: जी
1: आपने एक्ट कर दिया, दैट
0: और तब भी तालियां भी मिल सकती है और जूते भी मिल
1: यस
0: सकते हैं ना।
1: एग्जैक्टली
0: तो वो लाइव
1: बिल्कुल
0: परफॉर्मेंस करना, इट्स अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारी बातें करेंगे। और देखिए, वही उन्होंने उनका जो लुक था वो हीरो जैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने काफ़ी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के बलबूते पर अपना जो स्थान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में निभाया है। तो एक फिल्म आई थी गुलाम-ए-मुस्तफा, उसमें भी उन्होंने वैसे गुंडे जैसा ही काम किया हुआ है, लेकिन क्या रोल उन्होंने निभाया है। तो इसी फिल्म का आई थिंक ए हरिहरन जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना हम सुना देते हैं।

0: गाड़ी रोक
1: गाड़ी
2: रोक। अस्सलामुअलैकुम।
0: क्या हो रहा है मुस्तफा?
2: कुछ नहीं, गाड़ी जरा खराब है।
0: जीती रहो, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को क्या अपनी तरह लोहे का समझा है जो धक्का लगवा रहे हो?
2: मैंने

अभी आज भी ये तेरा गम मेरा गम, आज हम सब वो गम में हैं, लेकिन हम खुश भी हैं कि नाना पाटेकर ने अपनी जो ज़िंदगी है वो अच्छे से जी कर वो गए हैं, और आज लगता है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन मनीष जी, मैं तो कहती हूँ कि वो हमेशा से, कोई भी जो अच्छा इंसान होता है वो सबके दिलों में हमेशा रहते ही रहते।

0: जी को अवार्ड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी बेहतरीन एक्टिंग की थी, लेकिन उस वक्त का अवार्ड माधुरी दीक्षित को दिल तो पागल है के लिए मिला था। तो वो जो जस्टिस, मतलब जो मिलना चाहिए, मुझे लगता है खामोशी फिल्म को मिला नहीं था।
1: देखिए, ऐसा तो खैर होता है बहुत बार। अगर हम कहीं पीछे के अवार्ड्स में जाएंगे तो बहुत मूवीज़ जो हैं, जो अपना या क्या एक्टर्स जो हैं अपना, वो मुकाम नहीं मिल पाता उन्हें जो उन डिज़र्व करते हैं। तो
0: जी
1: कहीं उसके पीछे ग्राउंड्स होते हैं, तो हम शायद वो नहीं इवेलुएट कर सकते। लेकिन हमारी आंखों में, यानी कहते हैं ना कि जो देख रहा
0: असली
1: है,
0: अवार्ड
1: अगर
0: है
1: वो
0: वो
1: ऑलरेडी
0: जी।
1: अवार्ड विनर हैं, तो डेफिनेटली वी डिजर्व, दे डिजर्व दैट। और चलिए सुनते हैं ये गाना, ये दिल सुन रहा है,
0: कविता
1: फ्रॉम द
0: किशोर जी
1: मूवी।
0: की आवाज में।

तो ये फिल्म में इतनी बेहतरीन एक्टिंग थी, और नाना पाटेकर जी का जो नेचर था ना मनीष जी, हम सबको पता है कि वो बड़े शॉर्ट टेम्पर थे, और जो उनके दिल में होता है वही हमेशा से वो बोल देते थे, राइट? तो उनके उनकी फिल्मों के टाइम बहुत ही डायरेक्टर के साथ में उनके बड़े पंगे हुआ करते थे, क्योंकि वो जो बोलते हैं कि वो, और वो फिल्म इंडस्ट्री को और स्टेज को इतना थैंक्स कहते हैं कि जो अंदर उनका जो एंगर भरा हुआ है ना, तो वो उसी एंगर को वो बोलते हैं कि हम लोग जो है स्क्रीन पर हमारे रोल में दिखा सकते हैं, तो क्योंकि वो बड़े सच्चे थे, और इसीलिए वो जब भी बॉम्बे में वो आए

0: थे, लेकिन वो हमेशा खुद को कहते हैं कि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, एक मजदूर हूँ, एक किसान हूँ, मुझे ये मुंबई की लाइफ है जो मुझे रास नहीं आती है। और इसलिए वो अपनी फिल्मों के काम करने के बाद वो वापस से अपने गांव चले जाते थे, जो गोवा के आसपास उनका उन्होंने अच्छा सा बड़ा सा फार्म हाउस देकर रखा था, वहाँ पे खुद फार्मिंग करते थे, और वहाँ पे वो गाय, उनकी खुद की भी गौशाला भी थी, और प्योर
1: और वो खुद
0: खाना।
1: बनाना खाना भी उन्हें बड़ा अच्छा
0: जी
1: लगता था, और काफ़ी डिशेस वो अपने
0: वो
1: वीडियोस
0: अपना
1: के ज़रिए भी
0: खाना,
1: दिखाते
0: जी
1: थे।
0: अपना खाना खुद बनाते थे, और
1: और मैं
0: उनको
1: अभी कल ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र
0: जी
1: के फडणवीस आई थिंक वो उनके घर गए वहाँ फार्म
0: जी
1: हाउस
0: जी
1: पे,
0: जी
1: और
0: जी
1: उन्होंने बैठ के उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, अपने हाथ से सर्व किया,
0: जी
1: और जो उन्होंने बनाया था तो वो उन्होंने बैठ के वहाँ खाना खाया उनके उन
0: जी
1: फार्म हाउस पे, तो बड़ा अच्छा गेस्चर लग रहा था। तो आई थिंक कितने इतने
0: वो
1: सिंपल
0: सबको
1: रहने वाले
0: खिलाने
1: ये
0: में मानते थे, और
1: सज्जन।
0: दिल के बड़े उदार थे, दिखते थे एकदम हार्ड के, वो मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, लेकिन वैसे बता ना ये वो नारियल जैसे थे, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल दिल था उनका, हमेशा किसी को भी दुख में वो देख नहीं सकते थे,
1: अब
0: ऐसे नानाजी
1: देखिए
0: की। हाँ
1: वह
0: जी
1: जो आपके बात करते करते याद आ रहा है कि अब जैसे जैसे मतलब होता है ना, अभी इनके साथ ऐसे ही वन ही पास्ट अवे, तो उसके बाद होता है ना लोगों को यादें आनी शुरू हो जाती हैं, तो
0: जी
1: आप जब आप देखना शुरू करते हैं तो उनसे संबंधित जो अच्छे इंसिडेंट किसी के भी हुए होते हैं तो वो
0: जी
1: हमें दिखते हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: इसमें एक आ रहा था कि 2 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लिटरली अपने डेथ के बारे में कि
0: ओ
1: अगर
0: याद
1: मेरी
0: याद
1: अगर मौत होती तो मुझे मैंने तो
0: मनीष
1: अपना
0: जी, मनीष जी,
1: सामान।
0: ये जो आपने जो कहा है ना वो हम जरूर, ये जो है ना मैं आपके मुंह से
1: हम
0: सुनना
1: इसके
0: चाहती
1: बारे
0: हूँ।
1: में बात
0: जी हाँ, तो पहले
1: करेंगे।
0: ले लेते हैं ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: चलिए ठीक है।
2: Birkenstock sandals, blunt stone boots, don't have socks, covers the feet on the day or night commutes.
3: Come on down to the Broadway Shoe Repair to snag some new Blundstones, the perfect boots for Saskatchewan fall and winter. We have all the classic Blundstone models if yours are a little worse for the wear. We have new colors and CSA-approved steel toes, plus a new composite midsole and toe for lighter weight and less fatigue at the end of a long day. At the Broadway Shoe Repair, we've been wearing, selling, and tuning up Blundstones since Y2K. Whatever your Blundstones need, from stitching and patching to insoles and more, we can help. Broadway Shoe Repair, 638 Broadway Avenue.
2: Now all see ladies and see gentlemen, they all ask how and where. It's a Broadway Shoe Repair. It's a Broadway Shoe Repair.
4: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair-sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
5: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
6: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
1: वेलकम बैक दोस्तों, संगीत माला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मनीष, और मेरा साथ दे रही हैं
0: नीपा।
1: जी हाँ, तो दोस्तों आज जैसा कि ये कार्यक्रम संगीत माला आप तक हम पहुंचा पाते हैं, और वो जो हमारे आप तक पहुंचा पाते हैं वो है ICCA, दैट इज़ इंडिया कैनेडा कल्चरल एसोसिएशन। तो उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उनका एक अपकमिंग प्रोग्राम आने वाला है, जैसे दैट इज़ दीप उत्सव ऑन दीपावली 2026, वो होने जा रहा है लेक व्यू चर्च सास्केटून में 24 अक्टूबर को, और उस पर प्लीज़ आप अपनी अभी से सीटें रिजर्व कर लीजिए, बिकॉज ये प्रोग्राम बहुत ही ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर होने वाला है। जिस टिकट की प्राइस है, जर्नल टिकट रखा गया है, जिसमें $10 प्राइस है, और किड्स जो हैं अप टू 18 ईयर्स फ्री हैं, उनके कोई चार्जेस नहीं है। स्टूडेंट्स भी फ्री हैं अगर वो अपने आईडी के साथ आते हैं तो, दैट इज़ आल्सो अगर वो 18 के अबव हैं लेकिन स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं तो वो भी अपना आईडी दिखा के फ्री चार्ज एंट्री ले सकते हैं। तो वेन्यू ओपन होगा 12:30 बजे और वो इवेंट चलेगा रात को 7:30 बजे तक, 10:30 तक। तो और उसमें आप बहुत सारे खाने आपको डिफरेंट तरीके के, यानी 24 मोर देन 25 फूड स्टॉल्स हैं वहाँ पे, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड्स खाने को मिलने वाले हैं। परफॉर्मेंसेस फ्रॉम रन थ्रू फ्रॉम 12:30 to 10:30 आपको देखने को मिलनी है, तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेज और स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं किड्स के लिए। तो इसीलिए प्लीज़ आप ना ये डे बुक कर लीजिए। और ये कार्यक्रम जो होस्ट कर रहे हैं वो HSS और ICCA मिलके कर रहे हैं, दैट इज़ हिंदू सोसाइटी ऑफ Saskatchewan एंड ICCA, दैट इज़ इंडिया कनाडा कल्चर स्टेशन। तो आगे भी मैं आपको और जानकारी देता रहूँगा, प्लीज़ अपनी डेट लॉक कर लीजिए, October 24th। और चलिए बात कर रहे हैं हम,
0: जी हाँ मनीष जी, सॉरी मैंने आपको वो हम लोग को ब्रेक लेना था, और जो नाना पाटेकर जी ने जो बहुत ही सही बात की है, जो हम हमारे साथ भी रिलेट कर सकते हैं, कि आज हम हैं और हमें पता नहीं है हमारा कब ऊपर से बुलावा आ जाएगा, तो आप कह रहे थे मैं आपके मुझे सुना
1: बिल्कुल, और मैंने वो इंटरव्यू पूरा सुना, मुझे बड़ा मतलब होता ना कि लाइफ के उन्होंने बिल्कुल फैक्ट उन्होंने बोला कि मैं जो सच्चाई है यानी हमारी जो डेथ है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उसमें बिलीव करता हूँ, तो इसलिए मुझे पैसों के पीछे नहीं भागना, मेरे को चूंकि मालूम है कि मेरी तो मृत्यु होनी है और मैं उसमें अपने साथ सिर्फ 10 मन लकड़ी ले जा सकता हूँ, दैट इज़ जो लकड़ियाँ हमारे को जलाने के लिए चाहिए होती हैं, तो वो मैंने अपनी रिजर्व करा दी हैं, बोल दिया है कि वो मेरी अलग रखते हो ना, और उसमें कोशिश और ये मेक श्योर करना कि गीली लकड़ी ना हो अगर मेरे जब चिता जलाई जाए, क्योंकि उस गीली लकड़ी से धुआं निकलेगा और वो धुएं से जिनके लोगों जो आसपास आए हुए मेरे को श्रद्धांजलि देने लोग आए होंगे उनकी आंखों में आंसू जब आएंगे तो ये ना लगे कि वो झूठे आंसू हैं या मेरे लिए आए हुए। तो मतलब इतने फैक्ट, इतनी ओरिजिनल चीज़ें बोल देना और बता देना, मतलब बड़ा मतलब आई एम रियली
0: कि मैं बिलीव करता हूँ, मुझे पता है कि मेरी मृत्यु तो आने ही वाली है
1: बिल्कुल,
0: और मैं साथ में कुछ भी नहीं ले जाने वाला, सिर्फ मुझे इतनी लकड़ियाँ चाहिए।
1: बल्कि तो, अभी मैं वो भी देख रहा था KBC में भी जो अमिताभ जी के साथ वो आए थे, तो उन्होंने अमिताभ जी ने पूछा कि भाई आप अपने वहाँ गांव में जाके क्यों रहते हो, आप मुंबई में इतना अपने आपको फेम है, आप मूवीज करते हो ये करते हो, तो आप वहाँ क्यों यहाँ क्यों नहीं रहते, तो उन्होंने बोला मुझे गाँव में सुकून मिलता है जो वहाँ जाके मिलता है, मुझे यहाँ बॉम्बे में की भाग दौड़ में नहीं मिलता। तो मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ,
0: मुझे तो लगता है कि अमित जी ने ऐसे ही कह दिया होगा कि हाँ मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं ऐसा करूँ, तब उन्होंने कहा कि अमित जी आप सुन लीजिए, अपनी मन की सुनिए और आप भी चले आइए वहाँ पर। तो कभी कभी कोई बोलने के
1: वो नहीं चुपते बिल्कुल,
0: नहीं अगर आपको मन कर रहा है तो जरूर मन
1: की सुनिए,
0: और ये सब छोड़ छाड़ के, वही तो बोलता ना ये मोह माया है, उसे छोड़कर बस देहाती जीवन है वो, आप अपने अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, और उन्होंने हमेशा से वो किया है। और चलिए हम लोग गाना भी हमें प्ले करना है, तो किरण जी सुनना चाहती है फिल्म आई थी वेलकम,
1: जी सबसे ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर ये मूवी थी, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्टर्स थे, भरी हुई थी एक्टरों से, लेकिन कहते ना इन इसमें भी जो नाना पाटेकर जी ने अपना एक कॉमिक रोल प्रेजेंट किया वो अलग ही था
0: जी। तो ये गाना सुनाने के बाद में मैं थोड़ी बात बताऊंगी,
1: चलिए सुनाते हैं किया किया, थैंक यू किरण जी ये सॉन्ग के लिए।

0: क्या गाना है। और मनीष जी, मैंने जैसे आपको कहा कि ये नाना पाटेकर ने हमेशा से जो रोल किए हैं, आपको पता है ना, वो हमेशा गुस्सल गुस्सेल जैसा रोल होता है, और वो अच्छे से बखूबी निभा लेते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी इतना गुस्सा है। और सब लोग वही बोलते हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, तो वो बोलते हैं मैं गुस्सा नहीं करता, कि मेरे आसपास ऐसे लोग भरे पड़े हैं, और जो भी दुनिया में जो भी होता है ना, वो उनको उनसे सहा नहीं जाता, और फिर वो सब जो है ना वो अपने एक्टिंग में बाहर निकालता है। तो जब ये वेलकम फिल्म बन रही थी, तो अनीस बाजमी जी ने जब उनको कांटेक्ट किया कि नाना तुम्हें इस फिल्म में काम करना है, नाना जी, तो बोलते क्या रोल क्या है, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई, तो वो जब वो बिल्कुल रेडी नहीं थे, फिर भी वो अनीस बाजमी में बाजमी ने कहा नहीं नाना, आपकी जो इमेज है ना वो चेंज हो जाएगी। तो बोलते क्या ये पागलों जैसे सीन लेकर के, आलू ले लो, कांदा ले लो। तो वो बोले
1: यो सीन
0: ना
1: तो इतना पॉपुलर है
0: जी, तो
1: ना।
0: नाना पाटेकर जी बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, और वो बोले ये रोल मेरे से होगा ही नहीं, लेकिन अनीस बाजी ने उनको इतना कन्विंस किया। फिर नाना जी भी एकदम बोर हो गए, और फिर उनका अच्छा अपनी माँ की कसम खा के मुझे कहो कि क्या ये रोल मैं करूं मेरे लिए अच्छा होगा। तो अनीस बाजमी जी ने कहा हाँ मेरी माँ की कसम आप ये रोल कर लो। और फिर नाना पाटेकर ने जो आलू और कांदा ले लो वाला जो था, बोले अनीस बाजमी ने जैसे मुझे कहा मैंने उसी तरीके से एक्ट किया। और फिर देखिए आज उदय शेट्टी का रोल हम सब इतना याद कर रहे हैं। तो देखिए वही है कि वो उन्होंने बिलीव कर दिया अनीस बाजमी की बात को, और वो इसी को कहते हैं ना कि हर किस्म के रोल वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक फिल्म आई थी क्रांतिवीर, और उसमें भी उनका रोल बड़ा अलग था।
1: बिल्कुल
0: और उसी फिल्म का गाना हमारे रेगुलर लिसनर हशमी जी, जो हमेशा से हमें कॉल करते हैं, और अभी उनको थोड़ा ब्रेक मिला तो उन्होंने तुरंत कॉल कर दिया, और वो सुनना चाहते हैं क्रांतिवीर का जो गाना। मनीष जी सुनवा देते हैं यही गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: मेरे साथ डांस करोगे?
1: नहीं।
0: ए जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो हुँ? अब तुम वही करोगे जो मैं

0: मनीष जी, आपको पता ही होगा कि नाना पाटेकर की जो डायलॉग डिलीवरी है वो इतनी सख्त होती है ना, कि उनका जो बोलने का थोड़ा उनके मुझे थोड़ा उनका टोन जो होता है ना वो थोड़ा महाराष्ट्रियन आ जाता है, लेकिन वो ही उनको आगे लेकर गया है. और उनके जो बोलने का अंदाज है ना, तो हमारी एक लिसनर्स है आरती जी, वो सुनना चाहती है. फिल्म आई थी यशवंत, और उसका आपको भी डायलॉग याद होगा. देखिए मनीष जी, ये कोइंसिडेंस ही है कि मैं आपको उसी डायलॉग के बारे में बोल रही थी, और उसी वक्त हमें हमारे लिसनर ने कहा कि भाई यशवंत फिल्म का जो नाना पाटेकर का डायलॉग था कि एक एक
1: मच्छर
0: साला आदमी को हिजड़ा बना देता है. तो चलिए आरती जी की फरमाइश पर सुना देते हैं यही डायलॉग.
2: एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमलपुरी रात को अपाहिज कर देता है. साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है. सुबह घर से निकलो, भीड़ का एक हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, और सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ. क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है. साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है.

0: तो नेपा जी ये डायलॉग तो था ही, एक डायलॉग और, वैसे तो नाना पाटेकर जी के मूवी के अगर देखा जाए तो कई मूवीज के कई डायलॉग्स फेमस हैं, और एक उनका डायलॉग जो क्रांतिवीर में था कि जिसमें वो बोलते हैं जब फांसी पे उनको लटका रहे होते हैं, मतलब बेसिकली ओपन फांसी चल रही होनी होती है, तो उसमें आते हैं आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, तो वो डायलॉग मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को।
1: वही है ना कि उसमें वो डिंपल कपाड़िया को कलम वाली मीम साहब का, हाँ हाँ जरूर सुना देते हैं यही डायलॉग।

0: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली, एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े, रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को।
1: डायलॉग तो मन करता है कि आप पूरे पूरे सुनते रहें, लेकिन समय हमारे पास इतना कम रहता है।
2: नोटिस किया कि देखिए उनकी जो बोलने की स्टाइल है ना, वो देखिए इंडिया में ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो मिडिल से मिडिल क्लास के होते हैं, तो उनका जो बोलने का डायरेक्ट जैसे लगता है कि वो आवाम के साथ में बात कर रहे हैं, कि जो डेली रूटीन में जो आम इंसान जैसे बात करता है ना, उसी तरीके से उनका जो बोलने का था तरीका, इसलिए वो ज्यादा सबके ऊपर उसका असर होता था।
1: और आपने देखा, देखिए जिस तरह से मूवी में उनको डायलॉग्स दिए जाते हैं और जैसे प्रेजेंट करते हैं, वो एक्चुअल में भी उतने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और वो अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो कहते थे और अपनी बात को प्रेजेंट करते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो और लोग बाकी क्या सोचेंगे, लेकिन वो अपनी बात को कहने में पीछे नहीं हटते थे। मतलब उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, मतलब उन्होंने कोई बात।
2: और देखिए ये जो फिल्मों में उन्होंने जो वो डायलॉग्स जैसे गाई थी, और सब डायरेक्टर्स को लगता था कि उनके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिल्म आई थी तिरंगा, उसमें भी यही था, राजकुमार और नाना पाटेकर को जब उन्होंने लिया था, तो नाना पाटेकर जी के पहले उन्होंने रजनीकांत जी को कांटेक्ट किया था, लेकिन हम सबको पता है कि राजकुमार जी का एक अपना खुद का स्टाइल होता है और उनके साथ काम करने के लिए कोई मुश्किल से रेडी हो जाता है, लेकिन उन्होंने फिर काफ़ी मेहुल कुमार ने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया, फिर एंड में उन्होंने नाना पाटेकर को सिलेक्ट किया, और नाना पाटेकर ने एक कंडीशन रखी थी कि भाई राजकुमार जी अगर मैं एक्टिंग करता हूँ तो अगर मुझे कहीं पे भी रोकेंगे तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा, तो मेहुल कुमार जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर जब राजकुमार जी को पता चला कि उनके सामने नाना पाटेकर को लिया है, तो उन्होंने कहा अरे वो तो बहुत गाली गलौज बोलता है, उसे तुमने क्यों साइन किया, तो मेहुल कुमार जी ने उनको भी कहा कि डोंट वरी कि ये सब सही से हो जाएगा, और दोनों ने बड़ी शिद्दत से इस फिल्म में काम किया था और इतनी अच्छी ये
1: तो फिल्म। चलिए उनकी शिद्दत वाला एक गाना देखते हैं जो उनका जोड़ी का बड़ा फेमस रहा है, पीले पीले,
2: फिल्म आई थी तिरंगा का, तो सुना देते हैं यही गाना।
3: तुम हो हम हैं, न तुम कम हो न हम कम हैं, जानी

कितना मुश्किल हुआ होगा नाना पाटेकर जी को, जो वो इतने, वही ना जैसे मैंने कहा कि उनको कोई भी गलत काम होता था तो वो नहीं सह पाते थे, लेकिन देखिए एक्टिंग ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें उन्होंने कभी ऐसा रोल भी लिया है जिसमें उनको एकदम ही शांत रहना होता। फिल्म आई थी युग पुरुष, उसमें एकदम भोले भाले इंसान का उन्होंने काम किया था और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में गाया हुआ ये एक बहुत ही प्यारा गाना है, बंधन बंधन खुला पंछी उड़ा, तो हम सुना देते हैं यही गाना।

0: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
1: CFCR, we acknowledge that we are broadcasting from the traditional territory of the Cree, Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota nations and homeland of the Métis. We recognize and respect their enduring connection to this land, which has been a site of gathering, culture, and tradition for thousands of years. We are committed to amplifying Indigenous voices and stories and to fostering relationships rooted in respect and understanding as we work towards reconciliation. We are grateful for the opportunity to serve our community on this land.
2: Welcome back to Sangeet Mala, jo aap sun rahe hain CFCR 90.5 FM par mere yani Neepa ke saath aur mera saath de rahe hain.
3: Ji haan, aap hi ka dost aur host Manish, aur jaisa ki maine aapko pehle bhi bataya ki ye Sangeet Mala aap tak pahuncha pate hain ICCA, that is India Canada Cultural Association, unke saujanya se ye karyakram hum kai saalon se aap tak hum pahunchate hain, aur unka jo karyakram hota hai har saal, bahut sare karyakram rehte hain jo ki aapne piche kar samay mein bhi dekhe honge, jo aane wala jo program
2: aane wale ki main hi sochti hu, sab itne excited hai ki Diwali bhi aa raha hai, to ji haan zarur se aap log ye apni date hai usko yaad rakh lijiye aur tickets bhi ले लीजिए. और मनीष जी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सुन.
3: जी हाँ बिल्कुल जी, इसको हमने इस बार नाम दिया दीप उत्सव 2026 का, जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपावली, जो कि पूरे होल इंडिया में बनाई जाती है, उसे हम यहाँ भी बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कोलैबोरेट किया है HSS यानी हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्कैचुआन और ICCA इंडिया कनाडा कल्चर एसोसिएशन ने मिलकर इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं अक्टूबर 24th को. और जो लोकेशन है वो है लेक व्यू चर्च सास्कैटून. इसमें टिकट का प्राइस रखा गया है एक जनरल एंट्री के तौर पे $10, यानी कि सिर्फ आपको एंट्री के पैसे देने हैं, बाकी आप अंदर जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं आप अपने एंड से जो भी आनंद लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं. और उसमें किट्स जो हैं अप टू 18 बिल्कुल फ्री हैं, उन्हें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. और अगर स्टूडेंट्स आते हैं और उनके पास अपना आईडी होता है दिखाते हैं तो वो भी फ्री एंट्री उनको मिलेगी. ये कार्यक्रम चालू होगा 12:30 बजे से और चलेगा 10:30 बजे तक, यानी कि आपको कितने घंटे, आप सोचिए कितना कुछ खाने को मिलने वाला है, जिसमें 25 से भी ज़्यादा स्टॉल्स लग रहे हैं खाने के. और विशेष परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं, रन थ्रू चलेंगी 1:00 टू 10:30 तक, और उसमें कई सारे स्टॉल्स भी लगने वाले हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको खरीदने को मिलेंगी, जैसे दिवाली के सामान, सजाने के सामान, ज्वेलरी, कपड़े एंड लॉट्स ऑफ आइटम. तो बिल्कुल
2: 24th of October.
3: जी हाँ,
2: तो एग्जैक्टली 2 वीक है मनीष जी.
3: बिल्कुल,
2: और सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे. और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे मौके जब आते हैं तो अंदर से ही दिवाली का एक तो नाम आते ही हम खुश हो जाते हैं. और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे जैसे प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है हमारे लिसनर्स ने ये एकदम नोट कर ही ली होगी डेट.
3: हाँ, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप ICCA को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड मेंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या उनकी साइट पर भी जाके आप इन्फॉर्मेशन और प्राप्त ले सकते हैं.
2: और फिर से हम हमारे स्टूडियो का नंबर बता दे रहे हैं.
3: जी हाँ, 306-242-5002.
2: और हमें कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, उन लोग आज का प्रोग्राम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं. मनीष जी, मैंने सोचा नहीं था कि नाना पाटेकर जी के ऊपर हम पूरा प्रोग्राम कर सकेंगे, क्योंकि गाना जो होते हैं नाना जी और गाना, वो उनका मुझे नहीं लगता कि तालमेल कुछ बैठ रहा था. लेकिन देखिए, एक के बाद एक बात करते हुए हमें कितने सारे जहन में गाने आते गए हैं,
3: और उनमें हमारे जो लिसनर्स होते हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं जब वो कॉल करके हमें गाने बताते हैं. जैसे अश्मित भाई ने बताया, किरण जी ने बताया, और मतलब सब उन्होंने बताया हमारे अपने फरमाइश, हमारे गाने जुड़ जाते हैं,
2: मतलब चले जाते ना कि फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि नहीं ये गाना था, कौन सी फिल्म का था. तो अगला जो गाना है आप कौन सा सुनाने वाले हैं?
3: ये गाना बहुत ही थोड़ा सा मजेदार है, क्योंकि जुगलबंदी है अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर जी की, यानी दो दिग्गज कलाकारों की. तो सुनते हैं, हम हैं बनारस के भैया. अच्छा, तो मूवी कोहराम
2: की बात की, तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि जब कोहराम का शूटिंग चल रहा था ना, तो अमिताभ बच्चन जी ने आके सबको दूसरे दिन मिठाई देने लगे थे, तो नाना पाटेकर जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो अमित जी ने कहा कि भाई मैं नाना बन गया हूँ। तो नाना पाटेकर जी ने कहा अच्छा आप अभी नाना बने, मैं तो बचपन से ही नाना हूँ।
3: क्या बात है, देखिए उनका हिम्मत बिल्कुल।
2: तो चलिए कोहराम फिल्म का सुना देते हैं यही गाना हमारे लिसनर्स को।
4: ये जिंदगी तुम हो इस पे सदा, आज तुम्हारा जन्म दिवस है, रिलो तुम हो गए पैदा। वाह भाई वाह, क्या शेर मारा है, जरा हमरी भी तो सुनो। आए, आए?

0: नाना पाटेकर जी ने इतने दिलदार थे और वो हमेशा सोसाइटी के लिए भी काफ़ी कुछ डोनेशन करते थे, और उन्होंने नाम फाउंडेशन भी ओपन किया था कि जो जो जो किसान होते हैं वो काफ़ी, जब वहाँ पे महाराष्ट्र में दुष्काल हुआ था तो काफ़ी फार्मर्स ने आत्महत्या कर ली थी, तो उनको इतना दुख हुआ कि उन्होंने एक नाम फाउंडेशन करके खोला जिसमें वो सभी फार्मर्स के किसान की फैमिली को हेल्प करते थे। और उनको जब राज राज कपूर अवार्ड मिला था तो उसमें उनको 10 लाख रुपीस मिले थे, तो उन्होंने वो सारे के सारे डोनेशन में दे दिए थे, चैरिटी में दे दिए
1: आपने
0: थे।
1: डोनेशन की बात कही तो मुझे भी एक याद आ रहा है कि उसमें इसने जो हमारे गोलमाल के वो थे डायरेक्टर, क्या नाम है,
0: जी क्या मतलब हुआ
1: तो
0: क्या?
1: उन्होंने ये बोला था कि नाना पाटेकर ने कैमियो वो किया था उसके अंदर एक्ट,
0: हाँ
1: तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई नाना पाटेकर जी से पूछा है, रोहित शेट्टी,
0: हाँ
1: तो रोहित शेट्टी ने उनसे नाना पाटेकर जी से पूछा कि आप क्या चार्जेस लेंगे इसके,
0: जी
1: तो मैं क्या पे करूं उसके लिए, तो उसमें कैमियो उनको एक तो छोटा सा कैरेक्टर बस प्ले
0: जी
1: करना था गेस्ट अपीयरेंस में, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, उन्होंने मतलब गाली दे के लिटरली जो ऐसे
0: जी
1: प्यार
0: जी
1: में
0: जी
1: बोलते
0: जी
1: हैं कि भाई तेरे को ज़्यादा ही पैसे तेरे पास आ रहे हैं तो तू मेरे को जो देना चाहता है वो ऑर्फनेज को, किसी ऑर्फनेज को डोनेट कर दियो, तो और मुझे बताइए बाद में किस
0: नहीं
1: ऑर्फनेज को दी है, मुझे
0: नहीं
1: एक पैसा भी नहीं चाहिए। तो मतलब वो इस तरीके के थे कि मतलब
0: वही
1: होता है ना इतने
0: है वो।
1: जेनरस।
0: और आपको पता ही है ना कि जब प्रहार मूवी उन्होंने खुद ने डायरेक्ट की थी, और प्रहार मूवी में उन्होंने एक आर्मी सोल्जर का कैरेक्टर निभाया था, तो उसके लिए उन्होंने बकायदा 2.5 साल तक वो कमांडो की ट्रेनिंग कंप्लीट की।
1: जी, और
0: और
1: उन्हें
0: जब
1: कारगिल भी
0: जी हाँ, तो
1: उन्होंने
0: वही बेस रखकर जब कारगिल में हमारे
1: जॉर्ज फर्नांडिस को उन्होंने कहा था कि मुझे
0: जी
1: कारगिल जाना है और मुझे आप उसकी
0: और
1: इजाज़त
0: वहाँ पे
1: दीजिए।
0: उन्होंने सेवा दी थी।
1: जी
0: तो अगर इंसान को सोसाइटी को कुछ सर्व करना है तो फिजिकली फाइनेंशियली जो हो सकता है वो सब नाना पाटेकर जी ने कहा था। और नाना पाटेकर जी के गानों से ज़्यादा उनके जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत बढ़िया है। और उनकी एक कविता है मनीष जी, फिल्म आई थी वजूद में, उन्होंने एक पूरी कविता है, तो मैं चाहती हूँ कि हम हमारे लिसनर्स को वो सुना दें।
1: बिल्कुल, क्यों नहीं, चलिए सुनते हैं ये कविता जो उन्होंने माधुरी दीक्षित जी के ऊपर हम बोली थी।
2: कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताओ मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है, चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन, ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी, शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है, ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां है ख्वाब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, हालत दिले बेताब की, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम्ही इबादत हो मेरी, तुम्ही तो चाहत हो मेरी, तुम्ही मेरा अरमान हो। तकता हूँ मैं हर पल जिसे तुम्ही तो वो तस्वीर हो, तुम्ही मेरी तकदीर हो, तुम्ही सितारा हो मेरा, तुम्ही नजारा हो मेरा। यूँ ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम। मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ। तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो।
0: कैसे बताऊं मेरे लिए तुम कौन हो, क्या क्या उन्होंने एक ही लहजे में पूरी
1: आप देखिए एक सांस में, यानी ये कहीं उन्होंने पॉज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और मतलब कितनी सादगी से, कितने तरीके से उन्होंने प्रेजेंट की कविता, मतलब गूज बम्स आ गए मेरे तो सुनते।
0: मैं भी वही फील कर रही थी कि क्या उन्होंने, और माधुरी दीक्षित के साथ में उन्होंने परिंदा में भी काम किया था, और परिंदा के बारे में मैं ये कहूँगी कि जो अनिल कपूर के बड़े भाई का रोल जो जैकी श्रॉफ जी ने किया ना, वो गाना मतलब वो रोल नाना पाटेकर करने वाले थे, लेकिन फिर अनिल कपूर ने कहा कि नहीं, मेरे बड़े भाई के लिए जैकी श्रॉफ ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ दोनों भाई भाई लगते हैं, उन्होंने काफ़ी फिल्मों में भी काम किया था ना, तो फिर उनको ये जो नाना का रोल जो उन्होंने इस फिल्म में किया था और उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। तो यहाँ पर चलिए हम सुना देते हैं परिंदा का, तुमसे मिलकर ऐसा लगा, तुमसे मिलकर।

0: देखिए, गाने इतने अच्छे से चल रहे हैं और मनीष जी, जैसे 10th of October जगजीत सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी है, और हमारे एक रेगुलर लिसनर है जिनका नाम है रमेश जी, और वो रैले में रहते हैं, और वो जगजीत सिंह जी के बहुत ही बड़े फैन हैं, और उनका कल बर्थडे है रमेश जी का, तो उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने उनके लिए एक गाना डेडिकेट किया है। फिल्म आई थी प्रेम प्रेम प्रेम गीत
1: प्रेम गीत।
0: जी, उसी का जगजीत सिंह जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है, होठों से छू लो तुम। तो रमेश जी, आपको हम सब की तरफ से एडवांस में हैप्पी बर्थडे।

0: बहुत ही प्यारा गाना था। और मनीष जी देखिए, प्रोग्राम की शुरुआत में हम लोग सोच ही रहे थे कि हम नाना पाटेकर जी के बारे में क्या बोलें, लेकिन देखिए बातें करते करते अभी हम हमारे आखिरी पड़ाव में भी पहुंच गए हैं। और नाना पाटेकर जी की फिल्म आई थी ना प्रहार, जैसे मैंने कहा
1: जी
0: उन्होंने उसमें कमांडो की ट्रेनिंग भी खुद दे ली थी, और वो हमेशा चाहते हैं कि हम सबको एक साल तो अपना देना ही चाहिए देश को, कि आपको कुछ ना कुछ अपनी आर्मी के लिए या अपने कोई भी जो हमारे देश के सिपाही हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और ये उनका उनकी सोच सचमुच में कितनी अच्छी है कि जो हो सके इंसान उस तरीके से अपने देश के लिए हेल्प कर सकता है। तो फिल्म आई थी प्रहार का, उसी की एक नाना पाटेकर की उनको बहुत ये ठुमरी पसंद थी, तो सुनवा देते हैं यही ठुमरी शोभा गुप्त जी की आवाज़ में।

0: ना ना पाटेकर जी हमेशा से हमारे बीच में ही रहने वाले हैं, और मनीष जी उन्होंने काफ़ी मूवीज़ अभी भी बना कर रखी है, तो हमें नाना पाटेकर जी की काफ़ी नई मूवीज़ भी देखने को मिलेगी, जैसे ईथा, शक्तिशालिनी, द कन्फेशन ऑफ मैरी एंड कुकू की कुंडली और वेदांत, ये जो सब है वो उनकी अभी फिल्म आने वाली है। और उन्होंने एक वेब सीरीज़ भी की थी संकल्प, वो भी बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़ थी। मुझे लगता है वो सीज़न वन तो आ गई, लेकिन सीज़न टू शायद आई
1: राइट
0: होपफुली उन्होंने अगर शूटिंग कर लिया होगा तो हम ज़रूर देख पाएंगे। और देखिए नाना जी ने वनवास फिल्म जो की थी अनिल शर्मा जी की, उसका जो आखिरी जो गाना है हम हमारे लिसनर्स को सुनाएंगे, और वो नाना पाटेकर खुद ने गाया हुआ है, और हम चाहते हैं आप ये गाना एंजॉय कीजिए, और हम आपसे लेते हैं आज्ञा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, अपने परिवार के साथ में रहिए, और हमेशा नाना जी ने एक गलती क्या की थी, उन्होंने मैसेज छोड़ा अपने फ्रेंड को कि उनको हार्ट में पेन हो रहा है, बस एक कॉल ही कर लेते तो शायद मुझे लगता है कि आज जो ये पूरा सीन है वो चेंज हो सकता है। लेकिन तकदीर में जो लिखा होता है, जब आपकी लकीर ही शॉर्ट होती है तो फिर वेंटिलेटर भी आपके लिए काम नहीं आता।
1: बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि जिस तरह से वो बिल्कुल फिट थे, कोई शायद सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस तरह से नाना पाटेकर जी हमें बीच में इस तरह से छोड़ के चले जाएंगे, हमें रुखसत हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमारी सबकी श्रद्धांजलि आप उनके साथ है, और ऐसे कलाकार शायद ही मतलब हमें देखने को मिले, क्योंकि उन्होंने जो अपनी दी है, मतलब जो अपना सब कुछ इन्होंने जो अपने फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, मतलब हर तरीके से इन्होंने एक्ट किया, इतने साल इन्होंने दिए हैं, तो मैं बिल्कुल उनको सलाम करता हूं। और दोस्तों आप भी उनको अपनी श्रद्धांजलि ज़रूर अर्पित करें।

0: बतौर एक जो हम श्रोताओं के रूप में या बतौर अपने जैसे आप मूवीज़ देखते हैं उसके रूप में कि उन्हें आप देखें और उनको याद करें। चलिए सुनते हैं ये लास्ट का गाना और मिल लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।
1: टेक केयर, टाटा बाय बाय, सायनारा।

0: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैटिक स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तौसीक अज़ीज़। हमेशा की तरह आज एक नई बैठक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। पिछले 10 साल से ये बैटिक स्टूडियो का सफ़र आप लोगों के साथ बड़ी कामयाबी से चल रहा है और बैठक की रौनकें आप लोगों के तवसुफ हैं। और हम हर एपिसोड में, हर बैठक में हमारी कोशिश होती है कि हम एक टॉपिक, एक मेहमान के साथ आप लोगों के लिए बैठक सजाएं। और आज की बैठक भी बहुत अहमियत का हामिल है। आज हम बड़े एक हसास टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, उसके हवाले से हमारे अपने शहर सास्कटून में होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। और उसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, या मैं चंद एक बातें करूंगा और आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इन स्टूडियो वी हैव रिनाउंड पर्सनालिटी, अ फिलान्थ्रोपिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, जनाब अमजद रफीकी साहब, जो कि ना सिर्फ सास्कटून में एक अरसा दराज से मुकीम हैं बल्कि बड़ी कामयाबी से बिजनेस भी चला रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए जो फंड रेजिंग इवेंट्स होते आ रहे हैं थ्रू आउट कैनेडा, आज अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है कि ही इज़ लीडिंग दिस काज। एंड सास्कटून में पहली दफ़ा ये फ़ंड रेजिंग गाला हो रहा है, जो कि डायरेक्ट फंडिंग उन बच्चों, उन पेशेंट्स को जाएगी जो शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और एक जो नई लोकेशन कराची में हो रही है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, और ये सारी डोनेशन वहाँ पर भी जाएगी। दिल की गहराइयों से अमजद साहब, आपको खुश आमदीद। आप बैटिक स्टूडियो को आपने रौनक बख्शी, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये प्रोग्राम डेडिकेट किया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए, उसके फंड रेजिंग गाला के सिलसिले में। और डेफिनेटली ये हेल्प करेगा इस काज के सिलसिले में अवेयरनेस क्रिएट करने में, और डोनर आउटरीच में भी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।
0: जी अमजद साहब, मैंने सास्कटून में सिर्फ दो चीज़ों पे पूरे सास्कटून के लोगों को इकट्ठे देखा है। एक, जब जब हमें स्नो पड़ती है, स्टॉर्म आता है, हम सब एक पेज पे होते हैं कि जी स्नो साफ़ करनी है, हम उस चैलेंज को, उस चैलेंज से निपटते हैं। दूसरा, ये नोबल काज है जो आप लेके आए हैं सास्कटून में, इस पे मैंने बड़े देखा है कि लोग बड़े इमोशनली भी इससे अटैच हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के इस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या बिजनेसेस हैं, क्या इंडिविजुअल लेवल पे। तो इससे पहले कि हम इस इवेंट के बारे में बात करें, लेट्स लिटिल बिट टच बेस विद शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल।
1: जी, शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में तो बहुत वेल नाउन एक नाम है, और लोग ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी तमाम ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ को, और दे लव इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो ही हमने ये अनाउंस किया यहाँ पे सास्कटून में फंड रेजिंग का, तो हमें हर तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, रिगार्डलेस ऑफ एनी एफिलिएशन, पॉलिटिकल, रिलीजन, एनी अदर थिंग्स, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, आपको पता है कि ना सिर्फ उन लोगों का फ्री इलाज करता है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो तकरीबन 75% लोग ऐसे हैं जो जिनको माली मदद फ्राहम की जाती है, और उसके साथ साथ जो बाकी लोग जो पे करते हैं तो उनको भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पाकिस्तान के अंदर एक ट्रीटमेंट मिलती है, तो विच इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएटिंग। तो बहुत अच्छा एक वो अदारा है, वाहिद अदारा है शायद कि जो इस तरह लोगों की खिदमत कर रहा है।
0: बिल्कुल, ना सिर्फ ये इदारा पाकिस्तान में बल्कि मैं कहूँगा कि एशिया में एक ये ऐसा इदारा है कि जो उस एक्सटेंट पे जाके लोगों की खिदमत कर रहा है। तो आसान अल्फाज में ये है कि हर 100 में से 75 मरीजों का फ्री इलाज हो रहा है।
1: जी, थोड़ा सा इस पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि 100% फ्री उनका है, बट दे रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस। वो सिर्फ ये नहीं है कि जो भी पेशेंट आएगा उसको वो 100% दे डू वेरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद हो सकता है किसी को वो 50% असिस्टेंस दे रहे हो, किसी को वो
0: जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं,
1: डिपेंड करता है उनकी माली सूरत हाल पे,
0: जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं, जो फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं, वो जो वल्नरेबल पेशेंट्स हैं तो उनका वो इलाज करते हैं। अमजद साहब, आपने इमरान खान साहब के भी सुना होगा मुख्तलिफ फंड रेजिंग इवेंट्स में, फ़ंड रेजिंग इवेंट्स में, और सारा आपने देखा होगा कि शौकत खानम स्टार्ट जो है वो कैसे हुआ था। स्टार्ट होने में भी एक बहुत एक बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, मैं समझता हूँ कि मोटिवेशनल स्टोरी है कि किस तरह जो है वो एक पूरा पैनल बैठा था डॉक्टर्स का फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम यूएसए, और ज़्यादा ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से ये नहीं हो सकता। और आज एक वो दिन था,
1: 21
0: जी
1: 21 थे टोटल पैनलिस्ट, और 20 ने कहा था कि ये नहीं पॉसिबल, एक ने कहा था कि ये शायद बन जाए, लेकिन इसका चूंकि ये फ्री इलाज करने का आप सोच रहे हैं तो दिस मे नॉट सस्टेन, उसकी भी रिजर्वेशंस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दो आज तीसरा हॉस्पिटल कंप्लीट होने वाला है।
0: तो एक वो दिन था जहाँ पे जिनसे मशावरत की जा रही है उन्होंने मना कर दिया एक उस वक्त के फैक्ट्स और स्टैट्स के मुताबिक, और एक आज का दिन है कि जहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीसरा हॉस्पिटल जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। थोड़ा सा अगर हम जो शौकत खानम का कैनेडियन चैप्टर है जो कैनेडा में जिनके कितने सालों से इवेंट्स होते आ रहे हैं और हाउ सक्सेसफुली दे हैव बीन डूइंग दिस, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं।
1: जी, कनाडा में तो बहुत स्टार्ट से ही जब शौकत खानम की फंड रेजिंग शुरू हुई थी तो कनाडा में अर्ली 90s से फंड रेजिंग इवेंट्स शुरू हो गए, तो अप टू 2014 ये कैनेडियन रजिस्टर्ड चैरिटी नहीं थी, लोग स्टिल डोनेशन देते थे, लेकिन अब ये चीज़ मैं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये एक रजिस्टर्ड चैरिटी है थ्रू कैनेडियन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन सर्फ के नाम से है, और ये रजिस्टर्ड चैरिटी है। आपको अगर आप डोनर हैं इसके तो आपको वही बेनिफिट मिलेंगे जो किसी भी रजिस्टर्ड चैरिटी के अगर आप डोनर हैं तो आपको जो टैक्स में बेनिफिट मिलता है तो इसमें भी वो 100% आपको मिलेगा।
0: बिल्कुल। तो सास्कटून पिछले साल भी कनाडा के दूसरे सिटीज़ में भी हुए होगा इवेंट शौकत खानम के फंड रेजिंग, तो सास्कटून में पहले किसी ने क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया, इस साल क्यों लिया? आई नो हर वक्त हर चीज़ का एक वक्त होता है, बट और लेट मी पुट इट दिस वे कि क्या आपको लगता है कि इस साल वो रिस्पॉन्स आ रहा है जो आना चाहिए?
1: ऐसे तो सीख भाई कि आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद शौकत खानम फंड रेजर जब मैं 90s में लाहौर में मैं स्टूडेंट था। अच्छा। तो तब इमरान साहब खान साहब आते थे फंड रेजिंग करते थे, तो स्टूडेंट के पास इतने कहाँ होते हैं पैसे, लेकिन ये थे कि हम चले जाते थे कि इमरान खान साहब को देखना है या हेल्प थोड़ी बहुत कर दी। तो रिसेंटली जब मैंने कनाडा में फंड रेजिंग के इवेंट्स देखे, लास्ट ईयर की बात है, तो मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया कि यार आप इवन दे आर कमिंग रिजाइना तो वाई नॉट इन सास्कटून। तो लास्ट ईयर शोएब अख्तर और रीमा खान दोनों आए हुए थे, तो दे एग्रीड टू हैव एन इवेंट इन सास्कटून एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमने डेट भी सेट कर ली, वेन्यू भी सिलेक्ट कर लिया, एवरीथिंग, बट उसकी जो डेट्स थी वो कोई TCF की फंड रेजर के करीब करीब आ गई थी, और चूंकि शोएब अख्तर और रीमा आए हुए थे एंड दे कुडंट स्टे लॉन्गर, उनका एक स्केड्यूल होता है साल 6 महीने पहले डिसाइड होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमने पूरा वो एक फंड रेजर पूरा इवेंट फिर सब दोस्तों ने मिलकर मशवरा किया, उन्होंने कहा यार कि हम कम्युनिटी में जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाह रहे, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। तो इस साल फिर हमने बड़ा टाइमली अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस किया सारा कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम बात करेंगे कि कैसे उसका रिस्पांस आ रहा है। तो दिस वाज द बैकग्राउंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अरे इंशाल्लाह जब भी जो भी चीज़ होती है हर एक चीज़ का बेहतरीन वक्त मुकर्रर है। तो अभी कितने टाइम से ये इवेंट अनाउंस हो चुका हुआ है और कितने टाइम से इस इवेंट की मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट हो रही है?
1: जी हमने जुलाई में पहली मीटिंग की थी
0: जी,
1: और उसमें हमने रिजर्व का डेट के पोस्टर शेयर करने शुरू कर दिए थे, तो तो उसके बाद हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट दिस इज़ अ टॉक ऑफ द टाउन। हर किसी को जिससे भी आप रब्ता करें, जिससे भी आप बात करें, तो दे नो दैट दिस इवेंट इज़ हैपनिंग
0: not only within Pakistani community but other communities
1: other
0: as
1: communities
0: well. They can relate kyunki ye cause hi ek aisa hai ke Allah taala is azmaish se is imtihan se sabko bachaye to lekin ye cause aisa hai ki ye kisi ek personal politician ya kisi personal motivational individual ki taraf nahi ja raha ye overall jo hai wo
2: ek noble cause hai to इवेंट अक्टूबर 31st को हो रहा है वी स्टिल हैव सैटरडे वी स्टिल हैव अबाउट लाइक अ फ्यू डेज लेफ्ट फ्यू वीक्स अ कपल वीक्स एक्चुअली लेफ्ट तो इसमें कितने बिजनेसेस आपके साथ इन्वॉल्व हैं और अच्छा या कितने बिजनेसेस इन्वॉल्व हैं हम उनको भी मेंशन करते हैं और अगर कोई और बिजनेस स्टेप फॉरवर्ड आना चाहता है स्टेप फॉरवर्ड करना चाहता है कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो व्हाट आर द डिफरेंट टायर्स ऑफ बीइंग स्पॉन्सरशिप दे कैन चूज फ्रॉम
1: तो सीख भाई आई एम सरप्राइज कि जब हम बैठे स्पॉन्सरशिप टीयर्स डिसाइड कर रहे थे एक मीटिंग में तो काफ़ी सारे दोस्त जो भी थे वो कह रहे थे कि यार सास्कटून में इतने स्पॉन्सर इस अमाउंट के लेवल के ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा तो फिर रिलक्टेंटली वी स्टार्टेड कि यार चलो इतने से शुरू करते हैं लेट्स सी व्हाट हैपेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अमेजिंग रिस्पांस नॉट ओनली फ्रॉम बिजनेसेस बट उस पर हम फिर बात भी करेंगे कि कम्युनिटी ने कैसे रिएक्ट किया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसे रिएक्ट किया है इस इवेंट को और इस सारे इस काज को सपोर्ट करने के लिए और बिजनेसेस ने माशाल्लाह हमारे पास पहले हमारा ख्याल था कि हमारे पास प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर के लिए मुश्किल होगा तो हमने एक बिजनेस माशाल्लाह उन्होंने जो ग्रेट गार्डियन ग्रेट वेस्ट फार्मेसी रिजवान अली भाई हैं तो ही इज़ द प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर और एक और बिजनेस ने फिर उसके बाद हमें अप्रोच किया कि दे वांट टू बी एज वेल लेकिन चूंकि हमने अनाउंस किया हुआ था कि देर शुड बी ओनली वन प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर तो बहरहाल दैट बिजनेस नाउ इज़ अवर प्लैटिनम स्पॉन्सर वन स्टॉप कन्वीनियंस स्टोर एंड दे आर स्पॉन्सरिंग दिस इवेंट we also have right now confirmed 6 silver sponsors aur 2-3 ke sath takriban final discussion chal rahi hai so inshallah it will be very quick but the point which I want to mention here ke jis bhi business ko approach kiya gaya hai usne na nahi ki kisi na kisi tarah se unhone usko support kiya hai aur unhone अगर वो स्पॉन्सरशिप में नहीं आए दे प्रॉमिस टू डोनेट फॉर द काज सो दिस इज वेरी वेरी इनकरेजिंग माशाल्लाह
0: अगर हम स्पॉन्सरिंग की कैटेगरीज को डिफरेंट टायर्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन करें तो एक आपने प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप का कहा है दूसरा सिल्वर है वो आप थोड़ा सा अगर
1: प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर जो है वो $10,000 दे रहा है इवेंट को उसके बाद है प्लैटिनम प्लैटिनम इज़ $5,000 फिर उसके बाद गोल्ड स्पॉन्सर है $3,000 एंड देन सिल्वर स्पॉन्सर है $1,000 और 500 कम्युनिटी रिकॉग्निशन
0: और जिस तरह आपने कहा है कि हमारे पास प्रेजेंटिंग में भी है प्लैटिनम में भी बिजनेसेस आ गए हैं हमारे पास सिल्वर में भी आ गए हैं
1: जी
0: तो टिक ये कैटेगरीज थी डिफरेंट जिसमें आप लोग अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसेस इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं सो यू गाइस कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट वाइल चूजिंग वन ऑफ दीज कैटेगरीज आप प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर बन सकते हैं सिल्वर है प्लैटिनम है गोल्ड है और फिर उसके बाद कम्युनिटी है सो इट्स टोटली अप टू यू गाइस डिसाइड व्हिच वन यू हैव टू एंड व्हिच वन इज सूटेबल योर बजट
2: That's absolutely
1: so,
2: fine.
1: एक चीज़ मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा यहाँ पे कि प्रेजेंटिंग वॉज ओनली वन स्पॉट एंड इट्स टेकन ऑलरेडी तो यू कैन स्टिल बी एनी अदर कैटेगरीज उसमें जगह है
2: बिल्कुल
1: स्पॉन्सर में है प्लैटिनम में भी एक और स्पॉन्सर की है जगह पास अभी
2: ज़बरदस्त अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टिकट्स के हवाले से और टिकट्स के बाद फिर हम बात करेंगे कि अक्टूबर 31st सैटरडे को होने वाला जो फंड रेजिंग गाला डिनर है उसका ओवरऑल फॉर्मेट क्या है लेआउट क्या है तो टिकट्स के हवाले से अगर थोड़ी सी हम बात करेंगे, टिकट्स की प्राइसेस क्या है, उस हिसाब से प्राइसिंग के हवाले से कोई कंसर्न्स आए कि इज इट टू हाई, इज इट ओके, लाइक व्हाट्स योर इनसाइट ऑन दैट?
1: वही बात उसी पे, पहली दफ़ा हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता था क्या रिस्पांस होगा कम्युनिटी की तरफ से। तो कुछ जो दोस्त मीटिंग में आते थे तो उनका यही था कि यार अगर हमारे पास 200 लोग भी आ जाएं ना तो
2: जी
1: इट विल बी वेरी सक्सेसफुल इवेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बताए बगैर मैंने 350 बल्कि 400 टिकट्स प्रिंट करवा ली थी। तो
2: जबरदस्त।
1: आई डोंट नो व्हाई बट आई वाज कॉन्फिडेंट दैट कम्युनिटी विल रिस्पॉन्ड टू दिस इवेंट, दिस काज। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अमेजिंग रिस्पॉन्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स। वी अनाउंस द टिकट्स एंड इन वेरी फर्स्ट वीक वी सोल्ड अबाउट क्लोज टू 200 टिकट्स एंड दिस वाज अमेजिंग रिस्पॉन्स। तो राइट नाउ जो हमारे पास है टोटल टिकट्स हैं उनमें से तकरीबन आप ये समझ लें कि 85% हम सोल्ड आउट हैं। सो
2: जबरदस्त।
1: थोड़े से टिकट्स अभी, बल्कि 85 से भी ज़्यादा सोल्ड आउट हैं, कोई 30 के करीब, 35 के करीब टिकट्स हमारे पास बची हुई हैं। जहाँ तक आपने कॉस्ट का मेंशन किया कि इज़ इट टू मच एक्सपेंसिव आर टू लिटल, चूँकि हमारा फर्स्ट टाइम इवेंट था, आई
2: जी
1: नो अदर सिटीज़ में चूँकि टिकट की प्राइस काफ़ी 100 भी है, 125 भी है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी है, लेकिन हमारा चूँकि फर्स्ट इवेंट था तो हमने इसको सिर्फ इतनी रखी है टिकट प्राइस कि हमारी इवेंट की कॉस्ट कवर हो जाए।
2: बिल्कुल
1: दैट
2: ठीक
1: वॉज द मेन टारगेट। वी डू नॉट वॉन्टेड टू यूज़ डोनेशन मनी टू कवर द इवेंट कॉस्ट। सो
2: एक्सपेंसेस
1: दैट
2: बिल्कुल
1: वॉज
2: ठीक।
1: 100%, वी मेक श्योर दैट इट इज़ कवर्ड 100%। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट वाज वेरी रीजनेबल, दैट्स व्हाई वी गॉट सो वंडरफुल रिस्पांस। और किसी तरफ से भी आई हैवन्ट हर्ड अ सिंगल कंसर्न दैट दीज प्राइसेस आर हाई और दे आर नॉट अप्रोप्रिएट।
2: बिल्कुल। तो अमर साहब, एट व्हाट एक्सटेंट वी आर एडवर्टाइजिंग दिस इवेंट अदर देन सोशल मीडिया? हम इतनी टिकट्स, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 85% जो है वो ऑलरेडी बिक चुकी हैं, डिस्पाइट कि वी अभी अभी हमारे पास 2 हफ्ते पूरे बाकी बचे हैं, तो कहाँ कहाँ पे ये टिकट्स बिक रही हैं और किस तरह इनको मार्केट किया जा रहा है?
1: तो सीख भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मतलब इस इवेंट ने जितना सक्सेसफुली कम्युनिटी का रिस्पांस लिया है दैट वाज अमेजिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स।
2: बिल्कुल ठीक।
1: कि जो हमारे मतलब ऑब्वियसली आई वुड से कि ये काज एक ऐसा, इटसेल्फ शौकत खानम नाम ही ऐसा है कि उसकी लोग एक रिस्पेक्ट करते हैं,
2: बिल्कुल।
1: एक दे हैव एफिलिएशन विद दैट। सेकंडली फिर जो ही हमने इवेंट अनाउंस किया और मैंने हम सब दोस्तों ने मिलकर कम्युनिटी मेंबर से जब रबते करने शुरू किए एंड द पीपल हु केम इनटू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वो उनके माशाल्लाह वो लोग कम्युनिटी में बहुत अच्छी रेपुटेशन और कम्युनिटी में उनका जो सोशल वर्क है दे दैट इज़ लार्जली रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड बाय द कम्युनिटी,
2: बिल्कुल
1: उसका भी एक इम्पैक्ट आया है। फिर उसके साथ साथ हमने चूंकि टाइम से ये चीज़ें शुरू की और मार्केटिंग भी आप भी माशाल्लाह उसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, दानियाल भाई कर रहे हैं और
2: जी
1: सारे
2: जी
1: लोग कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग के हवाले से भी बड़ा अच्छा रहा है। और मुझे ये रिस्पांस सर्फ कनाडा टोरंटो से भी आया है कि यार जितनी अग्रेसिवली आप लोग चीज़ें लेके चल रहे हो दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन वेरी गुड शेप इन टिकट सेल्स, इवेंट प्लानिंग। द मेन थिंग इज़ राइट नाउ, आगे हम उस पर बात करेंगे डोनर आउटरीच के बारे में।
2: जी,
1: तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल अहेड ऑफ टाइम।
2: दैट्स वंडरफुल टू हियर, दैट्स वंडरफुल टू हियर। तो अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 3 हफ्ते से ये इसकी मार्केटिंग और कैंपेन चल रही है, आफ्टर द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट मीटिंग सिंस दिस डेट हैज़ बीन अनाउंस्ड, विच इज़ अक्टूबर 31। तो वहाँ तब से लेके आज तक, व्हेन वाज दी हाईएस्ट कलेक्टिंग मनी इन सेंस ऑफ सेलिंग टिकट्स? मतलब कोई एक
1: तो
2: ऐसा मोस्ट सक्सेसफुल दिन जो है वो रहा हो जिस दिन आपने सबसे ज़्यादा टिकट्स बेची
1: फर्स्ट
2: हैं?
1: फर्स्ट वीक फर्स्ट 2-3 दिन थे
2: ठीक
1: उसमें
2: है।
1: हमने ये किया था कि हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके ग्रुप में मैंने वैसे ही डाला कि यार लेट्स सेल 50 टिकट्स टुडे। तो वो 2-3 दिन हमने कंटिन्यू ऐसे किया तो नेक्स्ट डे मैंने कहा शायद 30 वी शुड सेट, लेकिन सब ने कहा नहीं, वी विल डू 50, लेट्स सेट द टारगेट एट 50.
2: बिल्कुल
1: तो 50 से ज़्यादा, बल्कि उस दिन भी तकरीबन 70 के करीब. तो दोज 3 डेज वर मेन, लाइक यू नो, आफ्टर दैट वी जस्ट शिफ्टेड आवर फोकस फ्रॉम टिकट सेल, बिकॉज वी न्यू दिस इज गोना सेल आउट बिफोर द इवेंट. तो फिर हमारा जो फोकस मेन स्पॉन्सरशिप्स और डोनेशन डोनर्स के साथ कांटेक्ट करना, उस तरफ शिफ्ट हो गया. तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वे टिकट सेल अब हमारा कंसर्न नहीं है, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि शायद हमें मतलब जल्दी ही इसको बंद करना पड़ेगा,
2: सोल्ड
1: टिकट सेल
2: आउट
1: का सोल्ड आउट हो
2: कर.
1: जाएगा.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
0: दैट बीइंग सेड, आई विल मूव ऑन टू अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, क्योंकि ब्रेक्स भी ज़रूरी हैं, स्पॉन्सरशिप भी ज़रूरी है. तो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्चुअल लेआउट एंड द फॉर्मेट ऑफ द इवेंट वंस अगेन, विच इज़ हैपनिंग ऑन October 31st, सैटरडे एट 6 PM. स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक.
3: In the year 20XX, a cadre of billionaires control humankind's most precious resource, information. Their hideous creation, known only as the algorithm, extends its reach through every connected device, curtailing users' ability to connect, learn, and stay informed.
4: Halt! You have been declared a news agency. Prepare for eradication.
3: In the secret CFCR headquarters, a small group has found a way to pass messages through the algorithm's blind spots, letting their followers know about station news, upcoming events, hot concerts, and more.
4: That is against the rules.
5: How about I dance to my own algorithm, robot? Your rules just don't compute for me.
3: Join the underground on Instagram at CFCR Community and on Facebook at facebook.com/CFCR Community Radio.
6: They're circumventing my precious restrictions. How dare they? Who are you people?
5: Get a clue, nerd. We're CFCR.
6: Hi.

Good. Welcome back. आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं बैठक स्टूडियो. मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तौसीक अजीज. और ब्रेक पे जाने से पहले हम आज बात कर रहे हैं शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए होने वाले फंड रेजिंग गाला डिनर के बारे में. अमजद रफीकी साहब प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे और हमने बड़ी सैर अंगेज़ गुफ्तगू की है. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी मोटिवेटेड कि किस तरह लोग, अगर किसी ने टिकट ख़रीदनी है, कोई अपने बिजनेस को जो है उसकी तरफ से चिप इन कर रहे हैं. सो दैट्स अमेजिंग टू सी. वी आर स्टिल 20-23 डेज बिफोर द इवेंट एंड वी हैव कलेक्टिव अ रियली हैंडसम अमाउंट विच इज़ रियली गुड एंड वेरी इंस्पायरिंग. अभी आप लोग देख रहे हैं कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान साहब, जो कि ऑनर हैं. जी जी, हम एडिट कर लेंगे, डोंट वरी. अभी आप लोग देख रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रिजवान अली साहब, जो कि

0: उसके जो भी इवेंट्स वगैरह अरेंज हो रहे होते हैं उनको भी कर रहे होते हैं, और शौकत खानम के रेफरेंस से जब आज हम इकट्ठे हुए हैं तो आई अप्रिशिएट इट। और इस नोबल कॉज में हमें मौका मिला है कि हम इसको टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे फंड कर रहे हैं, और इट्स अ वेरी ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू तआला टू गिव अस अ चांस कि हम इस मौके पे जो है वो सब कम्युनिटी के साथ मिलके शाना बशाना खड़े हैं अपने कैंसर के जो मरीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में उनके लिए, ताकि फ्री इलाज की सहूलत मुयस्सर हो सके।
1: वंस अगेन थैंक यू सो मच। अच्छा रिजवान साहब, मैं आपको बताऊं मज़े की बात कि आज ये स्टूडियो ना 10 साल बाद आज मुझे पहली दफ़ा अपना अपना फ़ील हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ एक चांद होता था, आज 2 चांद है स्टूडियो। टुडे द स्टूडियो इज मोर शाइनी, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर हेयर स्टाइल। तो कितने टाइम से गार्डियन ग्रेट वेस्ट फार्मेसी सास्कटून में है, फंक्शनल है, और कितने टाइम से सास्कटूनियन से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं?
0: जी, मैं गार्डियन से पहले अपना तारुफ करवाना चाहूँगा कि मैं सस्केचुअन में पहला मुसलमान फार्मासिस्ट हूँ जिसकी अपनी फार्मेसी मैंने बिल्ड की, और अभी तक पाकिस्तानी और मुसलमान पहला फार्मासिस्ट हूँ। और ये मेरी मोनोपली अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अभी तक कायम है कि किसी और बंदे ने फार्मेसी नहीं बनाई है। और मैंने जब
1: किसी और बंदे को ख्याल नहीं आया, या आप बंदों को बीमारी नहीं होने दे रहे?
0: नहीं, बंदे माशाल्लाह से पूरे सस्कैटून के अंदर इस वक्त 150 फार्मेसियाँ हैं, और हाल में सस्कैटून में कोई 1000 के करीब होंगी, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा पाकिस्तानी फार्मासिस्ट नहीं है जिसने कि इस जो है वो इस तरह का इनिशिएटिव लिया हो। काफ़ी चैलेंजिंग होता है डेफिनेटली एक प्रोफेशनल होने के नाते। और मैंने पहली फार्मेसी प्रिंस अल्बर्ट में बनाई थी, और अमजद भाई और बहुत सारे दोस्त हमारे जानते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर गार्डियन जो है वो 3 साल पहले मैं यहाँ पर फैमिली के साथ मूव हुआ और मैंने इसको सेटअप किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गार्डियन इज़ डूइंग वेरी गुड सो फार, और उसमें जो है वो सब लोगों का, भाइयों का शुक्रिया जो लोग हमारे साथ ताउन करते हैं और हमें पेट्रोनाइज़ करते हैं, और इन रिस्पांस टू हम अपनी कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारे इवेंट्स में उन पर जो है कम्युनिटी को पे बैक भी कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं अगर वो अपने पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वी लव टू हेल्प देम। और सो फार हमारी फार्मेसी 5-स्टार रिव्यूड है गूगल, और प्रीवियस फार्मेसी भी 5-स्टार रिव्यूड थी गूगल के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है कि वी आर पेइंग बैक टू अवर कम्युनिटी, और ये भी एक नोबल कॉज है जिसके साथ हम अटैच हो रहे हैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की जो फंड रेजिंग होनी है अभी, और उसमें वी आर ऑफ द पायनियर, और उसको जो है एज ए टाइटल स्पॉन्सर हम उसको फंड भी कर रहे हैं। और आप सब लोगों को भी इनक्रेज करेंगे कि आप भी हमारे साथ मिलें, और ताकि कम्युनिटी और बिजनेस टुगेदर हम इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं।
1: बिल्कुल रिजवान साहब, यू आर दी ओनली प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर फॉर दिस इवेंट।
0: जी ऐसे ही है, बिल्कुल, एट द मोमेंट आई एम द ओनली वन।
1: सो व्हाट,
0: अगर कोई और भी चाहे तो वो कर
1: सकता है। नहीं बिल्कुल, देयर आर, एंड आई एम नॉट सेइंग देयर आर नॉट बिजनेसेस आर नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड इन दिस कॉज, डेफिनेटली दे आर कमिंग विद देयर ओन वेज, दे आर चिपिंग इन एंड दे आर डूइंग वंडरफुल। लेकिन चूंकि इस इवेंट के लिए एक स्लॉट थी एंड विच यू हैव डन, सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक दिस स्टेप, एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू डोनेट दैट मच एंड बिकमिंग अ प्रेजेंटिंग डोनर?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से अपना बिजनेस कर रहा हूँ उसमें एक मेरा एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए रस्ते में मुकर्रर किया हुआ है, एंड आई एम ऑलवेज कीप ऑन डूइंग दैट काइंड ऑफ कॉजेज। व्हेन आई वाज इन प्रिंस अल्बर्ट आई हैव लाइक 25-40K ऑफ फॉर द हॉस्पिटल फॉर द प्रिंस अल्बर्ट, डोनेटिंग द व्हील चेयर्स एंड ऑल दोस। ये तो हमारा मुल्क है जो कि पाकिस्तान है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों की। तो आई वॉज़ वंडरिंग कि मैं जिस हद तक जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकूँ वो ये मैं इसको जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कहूँगा कि अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया, और आई एम गोइंग फॉरवर्ड फॉर दैट। इसमें सेकेंडली आई विल ऑल्सो अमजद भाई को भी मैं बहुत इसमें करूँगा कि ही ऑल्सो मोटिवेटेड मी टू स्टेप फॉरवर्ड फॉर दैट वन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑल दोज ब्रदर्स जो कि हमें कर रहे हैं इसमें। दिस मोमेंट मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि येस वी आर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर, वी आर हेल्पिंग दैट पीपल आउट इन पाकिस्तान, बट इफ स्टिल आई विल प्रमोट माई बिजनेस एज वेल इन दिस वे। अगर कोई आदमी अभी भी हमारे पास आएंगे तो हम उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन फी है उसका 20% स्टिल वी विल एड ऑन टू दिस वन प्रोजेक्ट जो कि अभी इवेंट हो।

0: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बैटिक स्टूडियो और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तौसीक अज़ीज़। और बेशतर दफ़ा मैंने ज़िक्र भी किया है, आज हम बात कर रहे हैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए होने वाले फ़ंड रेजिंग गाला डिनर के बारे में, जो कि अक्टूबर 31 सैटरडे को हो रहा है ट्रैवलॉज होटल में। मेरे साथ अभी बैटिक स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे दरीना दोस्त, और जो कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सास्कटून में। मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी होगा जो इनको नहीं जानता। मैं बात कर रहा हूँ दी ओनर ऑफ कैप्टन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एज़ वेल, जनाब जोहेब जहांगीर साहब। जोहेब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बैठक को रौनक बख्शी है और आप यहाँ पे मौजूद हैं। वंस अगेन फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट रेन ड्रॉप। के आप पहले वो बिजनेस हैं जिन्होंने पहले बोला कि भाई आई एम देयर टू स्पॉन्सर फ्रॉम माय बिजनेस साइड, सो अगेन थैंक यू। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप ठीक हैं?
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीख, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने दावत दी है और इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए जो है ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। ये टू बी ऑनेस्ट ये टॉपिक ना बड़ा दिल के करीब भी है, क्योंकि मैं जब
0: बैठक स्टूडियो वाला
1: बैठक से पहले जो शौकत खानम वाले की बात कर रहे हैं, बैठक तो तकरीबन मेरा ख्याल है 2018 में मेरा ख्याल है स्टार्ट हुआ, 17 में स्टार्ट हुआ है, राइट? तो शौकत खानम उससे जरा पहले,
0: बहुत पहले।
1: सो ये जब स्कूल में थे ना तो इमरान खान साहब जाहिर है हीरो थे और ये सारा पाकिस्तान में पॉलिटिक्स से हट के हम बात कर रहे हैं, ठीक है? मेरी एफिलिएशन किससे है किससे नहीं है उसका इससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं।
0: स्टिल अ हीरो,
1: ग्रेट। सो वो जब स्कूल में हमने एक हीरो को देखा और उसके लिए हम बाहर गए, टाइगर टीम उस वक्त शौकत खानम के लिए कूपॉन्स थे, 20-30 रुपए का एक वाउचर होता था जो कि हमने अपने नेबरहुड में यानी कि बचपन में उसके लिए चैरिटी की, यानी कि डोर नॉकिंग की जाके वो बेचे। तब फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं थे, हिसाब करना आता नहीं था। लेकिन यानी माल ने 2-3 कॉपीज बेच दी हैं तो बाकी अब्बू पूरे कर रहे हैं पैसे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये तब से यानी,
0: और ये तब की बात है, सॉरी मैं आपकी बात कर, जब पहली लोकेशन स्टार्ट हुई थी
1: फर्स्ट लाहौर के लिए जब इन्होंने कर रहे थे,
0: जी जी,
1: तो आई बिलीव इट्स वी आर टॉकिंग अराउंड 90s, ठीक है, 35-36 साल के आसपास ये बात हो चुकी है आई गेस,
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो वो इस वजह से ये ना टॉपिक बड़ा करीब दिल के, बड़ा बचपन से इसके लिए कोशिश की। फिर उसके बाद हमने देखा ये सिर्फ ये नहीं था कि एक फंड रेजर हुआ या एक पॉलिटिशियन या स्पोर्ट्समैन आगे आया, उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। हमने देखा अब ओवर द अब तो 35 साल की हिस्ट्री बन गई,
0: बिल्कुल,
1: कि 75% ऑफ पेशेंट्स इन शौकत खानम गेट फ्री ट्रीटमेंट। That is amazing.
0: Which is a big achievement.
1: बिल्कुल, मैं कहता हूं
0: बहुत बड़ी बात है।
1: अब ये नंबर जो जादुई नंबर तो नहीं है, ना ही किसी ने जादू से उसको सपोर्ट करना है। तो जाहिर है पाकिस्तान में जरूरत और तरह से है, हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है यहाँ पर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से चलो खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह सारा मामला बड़े केयर फ्री मामला होते हैं, इस पे है ना कोई परेशानी नहीं। तो लेकिन हम ये डोनेशन जो है ना जी ये हम दे सकते हैं जिसकी वजह से वहां पर जो लोग हैं ना जिनको ये फैसला करना पड़ जाए कि यार मैं अब रोटी खानी है कि मैंने इलाज कराना है,
0: दवाई लेनी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल
1: ठीक। तो वो इस वजह से ये कॉज, इसके लिए मैंने भी वो कह लेना कि बहुत दफा इसके लिए कोशिश करी है, अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा डाला है। तो अभी ये जो मैं देख रहा हूँ आप भी अमजद भाई भी कोई पूरी एक कमेटी है, एक वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारे माशाल्लाह कोई ना कोई अपना अपना काम, बल्कि मजा ये आ रहा है कि मैंने एक दो दफा बीच में लिखा है आगे से मैसेज आया ये काम कर लिया हुआ है, दिस शोज के माशाल्लाह मैच्योर लोग एक रिस्पॉन्सिबल कॉज की तरफ कितने जबरदस्त तरीके से जो है ना ऑर्गेनाइज काम कर,
0: जबरदस्त। मैं अमजद भाई को कह रहा था कि हम सास्कटूनियन सिर्फ दो ही बातों पे तो इकट्ठे हुए हैं, स्नो कटी करने में और शौकत खानम के लिए।
1: तो असल में नहीं, मैं देखे ना हम ये जो आप ये देखें जब मिल करके इत्तफाक से आप किसी भी तरफ बढ़ते हैं तो हमारे शहर के लिए एक एक अगर अमजद साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा ना मुझे कि $200,000 भी यार इंशाल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह करे दो क्या तीन भी हो जाए, लेकिन हमारे शहर में ऐसी बात करनी ना ये छोटी बात नहीं है। लेट्स से कोई ह्यूस्टन यूएस में बैठा कह रहा ना जी $200,000 कर लूंगा, या टोरंटो में कोई कह रहा है ना, दैट इज big, those are big cities, right?
0: Like yeah,
1: we
0: yeah.
1: here, I guess the biggest night I've seen in my life raising fund was about 65,000-70,000 in a night, right? For TCF, what was done, right? I guess you were also part of that.
0: जी बिल्कुल मुझे याद है. मैं ये समझता हूँ कि सास्कटून जैसे छोटे सिटी में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी बात होने जा रही है, जो कि अभी हम 20-25 दिन इवेंट से पहले हैं और $20,000+ हमारा इकट्ठा हुआ है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब 2,00,000 भी आज हम कि अमजद भाई ने अगर बात की है तो उन्होंने आप में इस टीम में सिटी में पोटेंशियल देखा है, तो उन्होंने ये कहा है ह्यूस्टन वाले टोरंटो वाले अगर बड़े सिटीज वाले की बात करते हैं, सो दे हैव देयर ओन रीजंस, बट वी हैव आवर ओन टीम,
1: माशाल्लाह
0: वी हैव द बिजनेसेस लाइक यू,
1: वेरी एनकरेजिंग माशाल्लाह। देखें बात ये होती है कि जब टीम डोर नॉकिंग करते हैं या जब आप आगे बढ़ते हैं फंड रेजर के लिए, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर आपको लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ,
0: ऐसे ही
1: लेकिन इसका वो जो उस सारी पेशेंस का जो रिजल्ट है ना, वो ये है कि आपने किसी की जिंदगी बचाने में ना हिस्सा डाल दिया। बस अगर मैं ये देख लिया ना मैंने
0: जी
1: कि यार मैं ना मान लो मैं आया हूं या मुझे कहीं पर देर हो गई है, कोई यानी के एक्सेस में मसला आ गया या कुछ और हो गया, समझ रहे, तो वो जो भी कदम उठा रहे आप इसको इस पेशेंस से इस तरह देख रहे हैं कि यार ये मैं एक्चुअली हिस्सा डाल रहा हूँ, ये इवेंचुअली किसी की जिंदगी बचाने में ये काम आना है, लिटरली डायरेक्ट कॉल टूवर्ड्स दैट।
0: बिल्कुल,
1: सो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है अमजद भाई आप सारे
0: माशाल्लाह,
1: रिजवान भाई गए हैं, रिजवान भाई भी काफी माशाल्लाह मैंने देखा है बड़ा एक्टिवली डोनेशंस कम्युनिटी में और चैरिटी कर रहे हैं, सो अल्लाह ताला सब के कामों में जी बरकत डाल के रखे।
0: Allow me to talk about Captain Transportation. I know you don't want to really highlight the business or aap Shaukat Khanam ke hospital ke bare mein baat kar rahe hain, but aap yahan pe do reasons ki bina pe baithe hue hain. एक तो ये है कि यू आर वन ऑफ द स्पॉन्सर्स, वन ऑफ द फर्स्ट, लाइक यू आर नॉट वन ऑफ दी बट यू आर द फर्स्ट स्पॉन्सर, कि जब ये अमजद भाई ने ऐसे बात की सिटी के सामने रखी तो कैप्टन टैक्सी जो बिजनेस है वो सामने आ गया कि जी मैं करूँगा, और वो फिर देखो देखो सारा, तो हाउ लॉन्ग यू बीन डूइंग दैट बिजनेस इन सास्केटून एंड हाउ यू आर सीइंग दैट बिजनेस चिपिंग इन दिस नोबल काज।
1: देखें बात है कि दोनों में ना थोड़ा सा मैं दूर इसलिए रखना चाह रहा था कि कैप्टन के नाम को एसोसिएट ना इमरान खान से कर दिया जाता है, तो वो इस वजह से मैं थोड़ा
0: सा कप्तान वाला,
1: हाँ समझ रहे मेरी बात, तो वो
0: लेकिन ये कैप्टन कप्तान को देख के नाम नहीं रखा गया था टैक्सी का।
1: अगर आप पूछें तो मैं PTI का बड़ा पुराना मेंबर हूँ,
0: ठीक है
1: तो इस इंडस्ट्री में मैंने मजबूरन या जैसे भी हालात, कनाडा जिंदाबाद, तो गाड़ी चलाई है, तो उसमें मुझे ऐसे महसूस होता था कि कुछ
0: शायद, और अब हम आपके बिजनेस के बारे में बात करें कि हाउ, ओके लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, लेट्स मेक इट फॉर्मल, हाउ डिड यू कम अप विद दिस नेम ऑफ कैप्टन,
1: बीइंग अ फॉलोअर कप्तान,
0: कप्तान विच इज इमरान,
1: यस
0: बिल्कुल देखिए अभी आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, जिस तरह आपने कहा है कि आप उनको सपोर्ट करें डिस्पाइट हिज पॉलिटिकल करियर, राइट, हमने ये देखा है और अमजद भाई भी जिक्र कर रहे थे, यू हैव ऑलरेडी मेंशनड कि इस जो कॉज है ये फंड रेजिंग हो रहा है इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त शामिल हैं जो और पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं
1: माशाल्लाह,
0: और वो वैसे आप उनसे इमरान खान सियासतदान की बात करेंगे तो वो हमारी लड़ाई हो जाती है, लेकिन जब इस हॉस्पिटल की बारी आती है तो वो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ना ये अवेयरनेस और ये नॉलेज भी किसी किसी को देता है कि यार चीज़ों को कैटेगराइज करें
1: कैसे करना,
0: इमरान खान उनके नज़दीक अच्छा सियासतदान नहीं है, ओके फाइन, बट इमरान खान इज द वन हु स्टार्टेड दिस हॉस्पिटल, तो वो अगर इसको कैटेगराइज करके दोस्त हमारे साथ जुड़े हों तो हमें उनकी उस सोच को भी अप्रिशिएट करना चाहिए।
1: जबरदस्त, मेरा ख्याल है इंसानियत के लिए अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो हम सब का फर्ज बनता है, کہ وہاں پر جتنی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں.
0: بالکل.
1: سپورٹ آج کل ٹو مینی ویز میں آپ کر سکتے ہیں. میڈیا سے کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا سے فری کر سکتے ہیں.
0: بالکل.
1: ٹھیک ہے, پیسوں سے کر سکتے ہیں آپ والنٹیئر. اس کے ساتھ کتنے کام ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ نے ایونٹ کرنا ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے. سو یہ سارے جو حصہ ہے وہ آپ کسی بھی طرح سے ڈال سکتے ہیں. آج کل تو آسان ہو گیا بہت زیادہ. اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں لاہور بنا, میں پھر شوکت خانے کی طرف
0: جانا چاہوں گا,
1: لاہور بنا, پشاور بنا, ابھی اب کراچی کی باری ہے. اور سننے والے اور آپ کی معلومات کریے کہ کراچی یہ اس وقت لاہور سے ڈبل سائز کا بن رہا ہے.
0: 400+ beds
1: لاہور سے ڈبل. اب یہ مجھے بتائیں, کوئی بندہ بیٹھے, چلے چھوڑے ساری
0: ساسکاٹونین کو سمجھائیں کہ ساسکاٹون میں کون سا ہاسپٹل ہے کہ بھئی اتنا بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے. اگر کوئی ابھی بھی سوچ رہا کہ یار میں پیسے ڈالوں یا نہ ڈالوں, وہ کون سے ہاسپٹل جتنا ہے
1: آپ کے یہ تینوں ہاسپٹل کو ملا کر اس سے بڑا
0: بڑا ہاسپٹل ہے ماشاء اللہ.
1: جی تو لیکن
0: I can see the reason behind your smile. آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے.
1: دیکھیں پاکستان میں آپ نام لیں کینسر پیشنٹ تو کس کا نام آئے گا سب سے پہلے ذہن میں, یا کون نام لے گا؟ شوکت خانہ.
0: شوکت خانہ
1: ٹھیک ہو گیا.
0: ایسے ہی
1: پھر وہاں میں کچھ میں نے دیکھا لوگ نا, او یار وہ نہیں صحیح, وہ صرف اپنوں کا فائدہ. اچھا وہ پتا کیا کرتے ہیں ابھی کہ انہوں نے اندر جو اپنا ڈیو ڈیلیجنس پروسیس جو کر رہے ہیں کسی کو فری ٹریٹمنٹ کرنا, اگر ان کی ان کو بندہ پریٹینڈ کر رہا ہے جو کہ وہاں پاسیبل ہے.
0: بالکل.
1: وہ ان کا نظام بڑا اچھا ہے.
0: اچھا
1: بڑا اچھا ٹک بورڈ اس کو سارا چیک,
0: اگر ویسے ہی اس کے سسٹم کو چیک کرنے کے لیے ادھر چلا گیا
1: کرا لوگوں نے نا.
0: اچھا
1: وہ ہوتا ہے تو وہ پھر جس کا پھر نہیں ہو پاتا نا وہ تھوڑے بہت. لیکن میں میجورٹی لوگوں کو, میں لاہور شہر ڈھوکا تھا نا, میرے گھر سے جو لاہور شہر کا ہے وہ 8-10 kilometers دور ہوگا بس, تو میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. آپ یقین کریں, میں نے ٹی وی کے پروگرامز کے علاوہ حقیقت میں بھی میں نے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یقین کریں جھولی اٹھا کر جو ہے نا اس ادارے کے لیے اور اس ادارے کے.
0: نہیں ہمیں یاد ہے جب عمران خان نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جی اگین وی آر مینشننگ عمران خان ایز اے فاؤنڈر. دیکھیں ہم پولیٹیشن کر کے تو ہم ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں, لیکن ہم تاریخ چینج نہیں کر سکتے. ہی از دی فاؤنڈر. اگر ان کا نام کوئی اور ہوتا تو ہم وہ نام لے رہے ہوتے. خان صاحب نے جب یہ اناؤنس کیا تھا تو ہم نے دیکھا ہے, کل ہی میں یہاں پہ ایک لوکل ساسکاٹون کے آرٹسٹ ہیں, وہ ایبسٹریکٹ پینٹنگز وہ بناتے, میرے بزنس میں وہ سروس مینیجر بھی ہے, تو وہ ایک پینٹنگ, ہی از ورکنگ آن اے پینٹنگ ود عمران خان پورٹ فولیو اینڈ ود شوکت خانم بلڈنگ, تو وچ از گوئنگ ٹو بی اویلیبل فار دی آکشن ایٹ دی ایونٹ بائی دا وے, اور ہی از ڈوئنگ دیٹ فار فری آف کاسٹ. ہی از اے وائٹ فیلو سو ہی از ڈوئنگ دیٹ. میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائی تم اس سے پہلے کہ تم کوئی پینٹ اس کینوس پہ پھینکو تمہیں اس کے پیچھے اسٹوری کا پتا ہونا چاہیے. 21 میں سے 20 ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا کہ یہ ہاسپٹل نہیں بنے گا, ہے نا. ایک نے بولا تھا, اس نے بھی کوئی اپنے کنسرن دیا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ جب یہ خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا تو اوپن کوئی گاڑی تھی, اس میں سے ویمن اینڈ کڈز دے لٹرلی تھرو دیئر آرنامنٹس اینڈ دیئر جیولری اینڈ دیئر سٹف, ویلیوبل سٹف, ٹو ڈونیٹ ٹو ہاسپٹل. آپ خود کی مثال لے لیں نا کہ آپ وہ کس طرح بکس اور کاپیاں بیچ کے جو ہے وہ کرتے تھے. حالانکہ آپ کے والد صاحب وہ جو تھوڑے بہت پیسے رہتے تو وہ ڈال سکتے تھے, لیکن وہ سارے ڈال سکتے تھے, بٹ ہی از ماشاء اللہ ویری سکسیسفل دیٹ یو آر سٹنگ ہیئر ٹوڈے اینڈ سٹل سپورٹنگ دی سیم کاز آفٹر 35 ایئرز.
1: الحمدللہ یہ تو
0: انہوں نے آپ کو اس طریقے سے ڈرائیو کیا.
1: الحمدللہ یہ میں ابھی میرا خیال ہے ٹائم ہمارے پاس 3 بجے تک ہے,
0: ابھی ہیں 5 منٹ.
1: 5 منٹ ہیں.
0: بالکل.
1: دیکھیں میں جو لوگ بھی اس کے اندر حصہ ڈال چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہی ملٹیپلائڈ بائی 70 کرے ادھر بھی اور آگے بھی انشاءاللہ. اور لوگوں کو نا یہ آپ کانفیڈینس دیں لوگوں کو کہ بھی یار دس از دیٹ چیریٹی. مزے کی بات ہے اٹ ہیز چیریٹیبل اسٹیٹس ان کینیڈا, رائٹ.
0: بالکل.
1: جو سرف ہے کینیڈین ایجوکیشن ریسرچ فاؤنڈیشن, آئی گیس.
0: بالکل.
1: کینسر ایجوکیشن ریسرچ فاؤنڈیشن.
0: بالکل بالکل.
1: یہ ایک تو یہ بات بڑی زبردست ہے کہ آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو وہ چیریٹیبل جا رہا ہے, دیٹس ٹیکسیبل ہے, ٹھیک ہے. उसके बाद आपको ये पता है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो मोस्टली वॉलंटियर है. सो बाकी इदारों में नॉन प्रॉफिट्स में ना उनको दिक्कत सबसे ज्यादा होती है जब फंड्स इकट्ठे करे जाते हैं ना, तो उसको जो ऑपरेशंस उसमें से 25-30-40% ले जाते हैं.
0: अच्छा बिल्कुल.
1: तो इसमें से
0: ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ये
1: हम इवेंट करने जा रहे हैं, अमजद भाई बैठे हैं, अगर उसमें कोई कमी बेशी हो आप बाद में करेक्ट कर दीजिएगा. मेरा ख्याल यही है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है सारी वो इस सारी डोनेशन से सेपरेट है और वो इसको अफेक्ट नहीं कर रही है. ऐसे ही है,
0: नहीं कर रही, वो ऑलरेडी हमने मेंशन किया है.
1: एग्जैक्टली.
0: बल्कि वो टिकट से खर्चा निकाल के भी थोड़े हम उसमें से भी उसमें जाएंगे पैसे.
1: क्या जबरदस्त. यानी कि जिस भी फंड रेजर की ऑपरेशनल कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स एंड ऑल दिस इज 0%, इवन अगर लेट्स से 3-4% भी हो, आप उठाएं, सबके पास आजकल एआई है, सब एआई से चेक करें कि अगर 3-4% भी हो ना, तो वो दुनिया के कामयाब तीन फंड रेजर्स में से फंड रेजर्स बन जाएगा. तो ये तो 0% ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के साथ है. माशाल्लाह सारे मसरूफ तीन लोग अपना इसके अंदर टाइम डाल रहे हैं.
0: ऐसा ही.
1: तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे. 31st of October को सारे आए इधर, जिन्होंने टिकट ले लिए हुए हैं वो जरूर आए.
0: हाँ जी,
1: लाजमी है, बिकॉज अब उन्होंने मजीद वहां पर.
0: अच्छा, अगर फॉर सम, सॉरी आई एम एडिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, अगर कोई दोस्त या कोई भाई जिन्होंने टिकट ले ली है फॉर व्हाट एवर रीजन वो नहीं आ सकते, दे कैन स्टिल डोनेट दैट टिकट. डोंट वेस्ट द टिकट, राइट? वहां पे किसी को डोनेट कर दें. अगर मैं नहीं आ सकता तो मैं किसी को दे दूं, हो सकता है वो जाके, एक तो टिकट ऑलरेडी यू हैव पेड, राइट, इट्स नॉट रिफंडेबल, बट आप उनको दे दें, वो हो सकता है वहां पे जाके कुछ चीज खरीद लें.
1: Maybe at that time, that person goes, okay, another 500 from me. There
0: we
1: you
0: never
1: go.
0: Know.
1: Right?
0: Never,
1: so instead of wasting the seat, और फिर हो सकता है दो खाने मुझे खाने
0: अगर आप नहीं आते तो सही बात.
1: लेकिन
0: we have to present.
1: नहीं, तो इंशाल्लाह, I guess जैसे सारे connected हैं, जैसे मैं active देख रहा हूँ, I'm so much loving this. I am happy that we actually have reached what lot of people struggle to achieve for their fundraisers, and we're like 20 days still to go for the event. We're sold out
0: and we're in no very good position
1: at the door.
0: Bilkul.
1: They're sorry. Yeah. I'm really sorry for listeners or anybody who's wishing to come in that day. We are out of tickets. Alhamdulillah, sold out.
0: नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि इस दफा कान हो गए ने.
1: कान हो गए ने.
0: अगली दफा
1: हेड ऑफ टाइम नहीं
0: है. अगली दफा हेड ऑफ टाइम टिकट लेंगे. तो देखें, जुलाई में हम बात कर रहे थे कि यार कितने पैसे इकट्ठे करेंगे, हैं 20,000-25,000 इकट्ठे कर लेंगे. 20 से अब अगेन अब
1: $14,000 तो उधर IAS में ही इकट्ठा हो गया.
0: मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल माशाल्लाह, मैं ये कह रहा हूँ कि 20 दिन पहले हम 20-22,000 पहले इकट्ठा. अब जितने सुनने वाले हैं ना, उनसे एक और रिक्वेस्ट है, ये मत सोचिएगा यार बड़ा पैसा
1: काम हो गया. काम नहीं हुआ, ये तो मजे की डिश बनेगी. यही तो काम होगा, जिसकी रेसिपी, जिसकी प्रेपरेशन इतनी अच्छी है.
0: आज देखें, आज जोहे भाई आप कहते हैं या कोई दोस्त कहता है कि जी मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ, मैं शिकागो से, किसी बड़े सिटी से आया हूँ. उस सिटी से जब आप आते हैं तो आपकी एक थोड़ा सा स्टेटस थोड़ा ऊपर, मैं उस सिटी से आया हूँ.
1: जी जी जी.
0: सिटीज को वहाँ की कम्युनिटीज बनाती हैं, उस सिटीज को वहाँ पे होने वाले इवेंट्स की सक्सेस जो होती है वो उन सिटीज में पहचान डालती है.
1: जी जी.
0: आज अगर हम कलेक्टिवली, अमजद साहब ने ये काम स्टार्ट किया और आज अगर हम ये इसको मज़ीद सक्सेसफुल करते हैं, अगर हमारा टारगेट 50 है तो अगर 20 दिन पहले 20 लेके बैठे हुए तो लाख करना कोई ज़रूरी नहीं, मुश्किल नहीं है. तो ये अगर हम मिल के काम करते हैं तो सास्केटून का नाम डालने में, पहचान बनाने में भी हमारा जो है वो किरदार है. वंस अगेन जोहे भाई, विद योर हेल्प, प्लीज़ डू अटेंड शौकत खानम फंड रेजिंग गाला डिनर विच इज़ हैपनिंग ऑन October 31st, डे इज सैटरडे, राइट एट 6 PM, हैपनिंग एट ट्रेवल लॉज होटल. अभी आप जाके अपनी टिकट्स लें. अच्छा, एक आखिरी चीज़ की, अगर आप टिकट लेते हैं वहाँ पे जाके, आप खाना खाने के अलावा कुछ नहीं करते, यू आर स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू द इवेंट. ठीक है, आप ये मत सोचें. एंड दिस इवेंट इज totally different than a typical fundraising event. Yes, it is fundraising event, lekin wahan pe aapko bahut zyada samaan milega. Baqaida bazaar hai jahan se aap logon ne cheeze khareedni hai. Aap auction hogi, silent auction hoga, and we are having like performances, and we have formal and informal sort of program. So again, that being said, agar koi cheez kami beshi reh gayi hai to Surf Saskatoon, CERF, Surf Saskatoon ke naam ka ऑफिशियल पेज है फेसबुक के, वहाँ पे जाएं. और अगर आने वाला विंटर है, अगर आपकी गाड़ी फंस जाती है, आपको गाड़ी की ज़रूरत है, तो किसको कॉल करें? कैप्टन को कॉल करें. ठीक है जी, कैप्टन को कॉल करें.
1: कैप्टन इज देयर टू हेल्प यू. ज़्यादा ज़रूरत कैप्टन टैक्सी में गाड़ी चलाने वालों की है, गाड़ी को इस्तेमाल करने वाले राइडर की नहीं है. तो अगर किसी ने कई काम ढूंढ रहा है, जैसे कोई ऊबर चलाता है या कोई ईट्स ऊबर ईट्स करता है, जिसके पास अपनी गाड़ी है, कम से कम 5 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, तो वो हमको राबता कर सकता है. अच्छी अर्निंग जो है इसके अंदर.
0: ज़ोहेब भाई एक दफा ईमेल मेंशन कर दें
1: जी. आप वेबसाइट है हमारी www.captain.taxi और ईमेल है admin@captain.taxi.
0: ठीक है, admin@captain.taxi के नाम पे जो ईमेल है वहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डालें. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, सो दिस इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. ज़ोहेब भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट वक्त की कैद है. बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैटिक स्टूडियो. बहुत मुझे अच्छा लगा. और हम एक काज पे हैं, आपने बैठक को रौनक बख्शी. एंड वंस अगेन थैंक यू.
1: आपका शुक्रिया, आपने बुलाया. इंशाल्लाह खुश रहें.
0: इंशाल्लाह
1: अल्लाह खुश रखे
0: जी. इंशाल्लाह थैंक यू सो मच बैटिक ऑडियंस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग बैटिक स्टूडियो को देख सुन रहे थे. आज हम शौकत खानम फंड रेजिंग हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे. तो अगेन शो प्रोग्राम के शुरू में मैंने जो बात कही थी कि हमेशा कोशिश करें, आप अपने आप को इतना प्रोडक्टिव रखें, अपने इस वजूद से इतनी कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपसे, आप उनके लिए प्रोडक्टिव साबित हो सकें. और ये टाइम है कि नॉट ओनली द पीपल सराउंडिंग यू, बट पीपल इन पाकिस्तान हु आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर डिजीज़, दिस इज़ द टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड एंड सपोर्ट शौकत खानम फंड रेजिंग गाला डिनर. थैंक यू सो मच. अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.
2: Link Home Inspections provides thorough home inspections you can trust. Not only do their certified inspectors deliver detailed reports for your peace of mind, they offer comprehensive walkthroughs to help you feel educated and ready for life in your new home. Trust Link Home Inspections to help walk you through the biggest transaction of your life and equip you with the knowledge you'll need as a homeowner. Connect with Link Home Inspections today at saskatooninspections.ca.
3: Looking to host a memorable event? Look no further than the Broadway Theater. We've got you covered from start to finish. With our professional team, we can assist with ticketing, equipment rentals, and provide experienced staff to ensure your event runs smoothly. Whether it's a corporate meeting, a private party, a wedding, or any special occasion, we're here to make it unforgettable. Don't stress over the details. Let us handle it all. At the Broadway Theater, we're your event partners. For inquiries, email rentals@broadwaytheater.ca. Or give us a call at 306-652-6556. The Broadway Theater, your destination for exceptional events.
4: Once the leaves start falling, we know what's around the corner. When it comes to shopping local this season, the Downtown Saskatoon gift card offers a little something for everyone. From delicious dining and unique shopping to relaxing spas and live entertainment, it's the perfect fit for everyone on your list. Pick one up today at our office downtown on 3rd Avenue, right across from CFCR, or purchase one online. Check out more details on our website, downtownsaskatoon.ca.
5: In the year 20XX, a